सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026 सुबह के 5:58 और 45 सेकंड होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। पहली सभा सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत। बस थोड़ी ही देर में सबसे पहले हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्से

0: या अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं। आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ऐसे में सभी सुनने वाले सुधी श्रोताओं को आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप ट्यून किए रहिएगा। लीजिए, भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वंदना।

श्रोताओं, जब मन संसार की दौड़ भाग से थक जाता है तब ईश्वर का द्वार ही सच्ची शांति का आश्रय बनता है। आइए प्रभु के चरणों की ओर बढ़ें और सुने ये मधुर भजन।

पर सही दिशा वही पाता है जो प्रभु का हाथ थाम लेता है। आइए उसी विश्वास और प्रार्थना के साथ सुनते हैं ये अगला भजन।

ये संसार क्षणभंगुर है, धन वैभव और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं, साथ चलता है तो केवल सत्कर्म और प्रभु का नाम। इसी सत्य का संदेश दे रहा है ये भजन, दो दिन का जग मेला।

हे प्रभु, सुख हो या दुख, बस आपकी कृपा बनी रहे और आपका स्मरण कभी न छूटे। इसी भाव से आइए श्रोताओं सुने हृदय को छू लेने वाला ये भजन।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपने दोस्त मैनिक के साथ आज 23 तारीख की सुबह सुन रहे हैं आप सभी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

जब मन पूरी श्रद्धा से प्रभु की शरण में पहुंच जाता है श्रोताओं, तब भय, चिंता और निराशा स्वतः दूर हो जाती है। ये वही श्री राम से विनय करता हुआ भजन है, सुनिए।

जब मन पूरी श्रद्धा से प्रभु के शरण में पहुंच जाता है तब भय चिंता और निराशा स्वतः दूर हो जाते हैं। आइए प्रभु श्री राम से यही विनय करते हुए सुनते हैं ये भजन कार्यक्रम के आखिर में।

तो ये था भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का अंक।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

श्री रामचरित मानस गान की आज की श्रृंखला हम सभी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इस पर विशेष कार्यक्रम सुनिए आज सुबह 10 बजे हेलो हजारीबाग में। साथ ही धक धक करता जिया क्यों मोरा हेलो हजारीबाग में ही विशेष शब्द संगीत की ये प्रस्तुति सुनिए। और अब समय हुआ ये बताने का कि आज आप अपने केंद्र से कौन कौन से कार्यक्रम सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज स्वास्थ्य वार्ता 7:20 पर सुनिए। सुबह आज भेंटवार्ता होगी पित्ताशय की पथरी के कारण, लक्षण एवं बचाव। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर नूरुल इस्लाम और बातचीत करेंगे हम सबके लिए मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। 7:30 का समय गीत संगीत का होगा और सुबह 7 कार्यक्रम लोक रंग में भोजपुरी लोक गीतों को सुनकर लुत्फ उठाएंगे। सुबह 8 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भाग 1 आज सुनेंगे 8:45 पर सुबह। आज हेलो हजारीबाग सुबह 10 और उससे पहले सुबह 9 विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जब 10 हेलो हजारीबाग कहने आऊंगा तो बहुत सारे कार्यक्रमों में आज क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, इसका इतिहास और महत्व, साथ में टेलीफोनिक बातचीत होगी पंकज मित्रा आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी सेवानिवृत्त और कुणाल सिंह सुधी श्रोता से। साथ ही आज जानेंगे के चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक जयंती, इस विषय पर भी स्थानीय गतिविधियां, न्यूज़पेपर की सुर्खियां और विशेष शब्द संगीत की प्रस्तुति धक धक करता जिया क्यों मोरा। सुबह 11 विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होंगे और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के

केंद्र से सुनिएगा। पुनः 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम और 4:30 पर संध्या प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का भाग होगा। संध्या 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी 5:02 पर 5:32 पर खेती बारी। संध्या 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 6:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाएंगे 6:30 पर संध्या और 6:55 पर विज्ञापन फिलरों के बाद 7:00 प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से झनकार। 7:15 पर फिल्म संगीत का आपका यह दैनिक कार्यक्रम।

7:30 पर ऑल टाइम हिट्स सदाबहार फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम है। रात्रि 8 बजे संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा और 8:15 पर आपकी चाहत फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। समाचार संध्या रोज की तरह 8:45 पर रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इन्हें हम सुनते हैं। स्पॉटलाइट भी यहीं से होता है 9:15 पर और 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम इसे प्रस्तुत करेंगे। 10 बजे रजनीगंधा और 10:30 पर आज के फनकार। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 11:10 पर सभा का समापन। तो ये था वो कार्यक्रम जिन्हें आप सभी आज सुनेंगे, रसास्वादन करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। कार्यक्रम विवरण अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र बस थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, क्योंकि 6:55 बस होने ही को है।

0: यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देश से मनीला नगरे आयोजित क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देश से विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-अधिक-19शततमे वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-अधिक-19शततमे वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयम् दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ
3: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। भोजपुरी लोक गीतों को रखा है आज सबसे पहले श्रेणी में। हमने सबसे पहले भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित इस भोजपुरी लोक गीत को सुनिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तत्सत न तो पुरुष है न तो स्त्री, इसीलिए उस तत्सत को बालक की संज्ञा दी जाती है। प्रकृति उसे लाड़ प्यार देकर पुरुष बनाना चाहती है कि बीज में अंकुर फूटे। रहस्यमयी ये भावना प्राकृत जन में हास परिहास का साधन बनती है। साधक समाज में यही रहस्योन्मुखी व्यंजनाएं जगाती है।

0: भोजपुरी लोकगीतों का लुत्फ उठा रहे थे। कार्यक्रम था लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आपने हमें ट्यून कर रखा है, स्ट्रीम कर रखा है अपने मोबाइल ऐप पर। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज भेंटवार्ता विषय है पित्ताशय की पथरी, कारण लक्षण एवं बचाव। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर नूरुल इस्लाम। इनसे हम सबके लिए इस विशेष स्वास्थ्य चर्चा पर बातचीत की मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी ने। तो आइए, पित्ताशय की पथरी, कारण लक्षण एवं उसके बचाव के बारे में जाने डॉक्टर नूरुल इस्लाम से इस भेंटवार्ता में।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नूरुल इस्लाम, जिनसे हम जानेंगे पेट की बहुत सी बीमारियों में एक खास बीमारी है कोलीलिथेसिस या पित्ताशय की पथरी। ये क्या है, इसके कारण क्या हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन करता हूँ।
1: डॉक्टर साहब, आपसे पहले सवाल के तौर पर ये जानना चाहेंगे कि पित्ताशय या जिसको पीत का थैला भी कहते हैं, ये क्या है?
2: पीत का थैला जो है एक्चुअली मनुष्य के शरीर का बनावट जो है उसमें एक अहम सबसे बड़ा ऑर्गन जिसको कहते हैं वो लीवर, जो कि हमारे पेट के अंदर है, और इसको यकृत या लीवर,
1: आज के समय में तो लीवर ही लीवर है।
2: तो वो लीवर का मुख्य काम जो है वो हमारे शरीर के भोजन का पचाने के लिए पित्त का निर्माण करता
1: है। पीला हरा रंग का,
2: पीला हरा रंग का, वो हमारे भोजन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण,
1: लीवर के द्वारा ही निर्मित होता है।
2: लीवर के द्वारा ही निर्मित, तो लीवर से पित्त का निर्माण होने के बाद वो लीवर से निकल करके पित्त के थैले में जमा होते रहता है।
1: जी,
2: और जब हम भोजन करते हैं तो फिर वहाँ से उस थैले से वो निकल करके हमारे आंत में आता है और वो पाचन में
1: पाचन क्रिया का कार्य करता है।
2: तो वो लीवर से जब पित्त निकल के पित्त के थैले में वो आके स्टोर होता रहता है।
1: जी,
2: तो पित्त के थैले का मुख्य काम वही है कि वो पित्त को जमा रखता है, जो डाइल्यूट फॉर्म में बनता है उसको वो कंसंट्रेट करता है, और फिर जब हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का जरूरत होता है, तब वो वहाँ थैले से बढ़ करके आंत में आता है।

0: तो ये एक नॉर्मल बनावट हर इंसान में है
1: जी, जो कुदरती तौर से ये बना हुआ है वो काम करता है। पिताशय में पत्थर बनने के क्या कारण है?
0: पत्थर बनने के तीन चार प्रमुख कारण है, जिनमें से एक प्रमुख कारण तो इडियोपैथिक है, जिसको बोला जाता है कि कोई जानकारी नहीं है कि क्यों बनता है।
1: जी, जी।
0: अभी तक साइंस ये कोई एक
1: पता नहीं लगा पाया।
0: लेकिन हाँ, ये जो होता है उसमें एक पिगमेंट स्टोन होता है, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, तो एक मिक्स्ड स्टोन होता है।
1: जी।
0: ये तीन चार स्टोन मुख्यतः होते हैं। तो और कॉमनली इसका कारण जो है वो ये जो बनावट है उसमें जन्मजात रूप से थोड़ा बहुत अंतर सब में पाया जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: कैसे सबकी आंखें अलग है, सबके दांत अलग हैं, सब कोई मनुष्य है, लेकिन कुदरत ने सबको अलग अलग थोड़ा ही बनाया
1: रखा ही है।
0: तो वही जो डिफरेंस है पित्त के थैले के आसपास की कुदरती बनावट, तो किसी किसी का ऐसा बनावट हो गया कि वहां से पित्त सही मात्रा में खाली नहीं
1: हो पाता है,
0: तो वो पित्त अंदर जमा होते होते होते होते वो पत्थर का निर्माण
1: अच्छा करने लगता। ये ज्यादातर किन लोगों में होने की इसकी संभावना होती है?
0: ये ज्यादातर मुख्यतः पाया जाता है 5F हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि फैटी फेयर फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, मतलब 40 वर्ष की थोड़ी सी मोटी औरतें जो फेयर हों, जो फर्टाइल हों, तो उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। और इसका मुख्य वजह जो है औरतों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी है, उसका भी कुछ नहीं। और एक बार पत्थर का निर्माण हो जाता है तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है, आपको उसके लिए डॉक्टर का सलाह लेना है और ऑपरेशन कराना है।
1: तो ये तो कारण आपने बताया कि पत्थर का निर्माण कैसे हो जाता है अंदर में। अब है कि इसको हम जानकारी उसका कैसे लेंगे, लक्षण क्या है, पता कैसे चल पाएगा?
0: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर पत्थर जो है वो ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई लक्षण नहीं
1: जी,
0: जिसको हम लोग साइलेंट स्टोन भी बोलते हैं
1: जी, हमने पता ही नहीं चलता है
0: कुछ नहीं, मतलब हमने कभी कोई जांच कराया नहीं तो हमको पता भी नहीं।
1: और सिंपल अगर पेन होता है, अगर पेट का एब्डोमिनल पेन होता है, तो वहां भी पता नहीं चल पाता
0: जब तक
1: दर्द अधिक जब बढ़ने लगता है।
0: ज्यादातर इसको एसिम्प्टोमेटिक या साइलेंट स्टोन्स बोलते हैं, क्योंकि पत्थर कोई एक दो दिन में तो बनता नहीं है, तो सालों का पत्थर।
1: हाँ,
0: अब उस सालों में जो है वो कब से बना है और कब से आपके शरीर में है ये कोई नहीं जानता
1: जी,
0: कोई लक्षण नहीं है, वो अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हाँ, जब लक्षण प्रस्तुत होने शुरू होते हैं, प्रकट होने, तब फिर डॉक्टर से सलाह के बाद जब हम लोग जांच करते हैं पता चलता है कि गॉल स्टोन पित्त के थैले में पत्थर है। ऐसे मुख्यतः जो लक्षण है वो दर्द का होना है, वो भी पेट के ऊपर के हिस्से और खासकर दाहिने हिस्से में
1: जिधर
0: लीवर है वहां पे दर्द होता है। तो शुरू में ये दर्द कुछ समय के लिए होगा, मान के चलिए कि आपने कुछ भोजन किया, फैटी मील लिया, तेल या वसा या मसाला खाया,
1: पाचन नहीं हो पाया
0: तो आपको आधा एक घंटा के लिए दर्द का एहसास हुआ, फिर वो दर्द तो इस तरह का चलता रहता है 2 महीना 6 महीना साल भर। क्योंकि दर्द लंबा नहीं रहता है तो मरीज डॉक्टर से सलाह नहीं लेता है।
1: करते हैं जी।
0: एक वर्ड हम लोग डिस्पेप्सिया यूज करते हैं, वो भी गॉल स्टोन का एक लक्षण। बहुत सारे लोग जो आम बोलचाल में कहते हैं कि हमको गैस बन जाता है, तो ये पेट का फूलने जैसा लगना, अत्यधिक गैस का बनना, पाचन सही से नहीं होना, ये सब लक्षण
1: होना पड़ता जी।
0: और ये सब क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस जो है जब, तो उसमें होता है। कभी कभी पत्थर जो है वो पित्त के आपका पित्त की नली को जाम करता है,
1: तो
0: वो सब स्थिति में बहुत तेज दर्द होता है जिसको हम लोग एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें दर्द लंबा खींच जाता है, बहुत तेज दर्द होता है, मरीज को उल्टी होने लगती है, और उस सब कंडीशन में मरीज को भर्ती करके उसको इलाज करना पड़ता है। तो ये दर्द जो है ये एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में भी हो सकता है। और अगर पत्थर बहुत दिन तक पित्त के थैले में रह जाए तो कभी कभी वो निकल करके पित्त की नली में आ जाता है, जिससे जॉन्डिस होने का भी खतरा हो। तो अगर पित्त के थैले के पत्थर के साथ जॉन्डिस हो जाए तो और आपका मुश्किल मामला
1: है, होती है जी।
0: और उससे भी मुश्किल मामला एक और है कि पैंक्रियाटाइटिस होता है, जो लीवर के नीचे पैंक्रियाज एक ऑर्गन है, तो वो पैंक्रियाज में अगर सूजन आ गया तो मामला और पेचीदा हो जाता है और जटिल हो जाता है। और अगर सालों साल 50-60 साल

0: युग पाए गए हैं।
1: और पित्त थैले का कैंसर अभी बिल्कुल लाइलाज है, और उसके लैब जो पत्थर आपका मतलब समझ लीजिए कि जानलेवा में वो बदल गया।
0: लक्षण तो आपने बता दिया, अब इसके कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं?
1: जैसे पित्त थैले का पत्थर है, मरीज हमारे पास आता है नॉन स्पेसिफिक पेन लेके या बहुत ज्यादा दर्द लेके या जॉन्डिस लेके या जो भी, तो एक सिंपल पेट का अल्ट्रासाउंड जो कि आज बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध है, एक अल्ट्रासाउंड से आपका पित्त थैले का पत्थर का पता चल जाता है। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, पत्थर से कितना नुकसान हुआ है वो भी एक अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि आपके लीवर में कितना सूजन आ गया या पित्त की नली में आपका क्या असर हो। अब हाँ, अब अगर मामला पेचीदा हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया या अगर किसी कारणवश कैंसर में तब्दील हो गया, तो सीटी स्कैन एमआरआई सब तकनीक है, लेकिन पहला जांच शुरुआती जांच एक अल्ट्रासाउंड काफी।
0: तो डॉक्टर साहब, जब मालूम हो गया कि पत्थर ही है तो इलाज के तौर पर क्या करते हैं? इसके लिए ऑपरेशन ही जरूरी होता है या फिर दवाओं से भी इसका निदान मुमकिन है?
1: पहले तो हम ये बता दें कि दर्द की दवा से तो दर्द तो कम हो जाता है
0: जी।
1: एंटीबायोटिक वगैरह खाने से जो है आपका दर्द कम हो जाएगा,
0: सिंपल पेट दर्द है तो कम हो जाएगा।
1: कम हो जाएगा, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं स्टोन है, तो किसी दवा से स्टोन का जो है गलना या खत्म हो जाना पॉसिबल नहीं है। मेडिकल में भी स्टोन डिसॉल्विंग ड्रग्स हैं, एक दो ड्रग हैं जो कि
0: हैं,
1: हाँ, जो दावा करते हैं कि हम पत्थर गलाते हैं, लेकिन होता यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव जिसको कहते हैं कि आपने कितना खर्च किया और क्या पाया, तो उसमें जो है आप बहुत नुकसान में होंगे। कि अगर उस दवा की पद्धति में आप जाना चाहें कि हम दवा खा के गलाएंगे, तो आपको 10 साल लगेगा और 10 साल में आप जितना खर्च करेंगे उससे कम समय में आप ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन में पूरा पित्त की थैली पत्थर समेत निकाल लिया जाता है। तो लोगों में भ्रांति है कि पत्थर छूट जाएगा या कुछ होगा, तो ऐसी बात है क्योंकि पूरा पित्त का थैला निकाल लिया जाता है। कुछ अवधारणा है कि पित्त का थैला निकल गया तो मेरा जिंदगी भर पाचन क्रिया में असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमारी से आप ग्रसित थे वो बीमारी जब निकल जाएगा तो आपका पाचन क्रिया इम्प्रूव होगी, आसान होगी।
0: तो ये तो डॉक्टर के पास आने की बात होगी, लेकिन उससे अगर पहले जो बचाव के क्या उपाय है इसके?
1: बचाव के लिए तो कोई बहुत ये नहीं है कि खान पान या आहार पे कंट्रोल किया जाए तो पित्त के थैले से बचा जा सकता है। होने का तो ये बच्चों में भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे 5-6 साल के बच्चियों में भी ऑपरेशन किए हैं
0: जी, जी।
1: तो ये चूंकि बनावटी कुदरत तो आपको बचपन में भी आ सकता
0: है,
1: लेकिन श्रोताओं के रुचि के लिए मैं बता दूं कि मोटापा से अगर आप बचते हैं
0: जी,
1: खास करके महिलाएं
0: जी, जी, जी।
1: तो मोटापा से अगर बचाव करते हैं तो पित्त के थैले का पत्थर बनने का संभावना कुछ कम हो जाएगा
0: जी, जी।
1: और बाकी आप खाने में तेल, वसा, मांस ये सब कम लें, मोटापा से बचें, नियमित व्यायाम करें, एक खाने में सलाद आहार का ध्यान रखें
0: जी, जी।
1: तो कुछ हद तक बचाव संभव है।
0: तो डॉक्टर साहब, कोलेलिथियसिस या पित्ताशय की पथरी से संबंधित जो जानकारी आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

पिताशय की पत्री कारण लक्षण एवं बचाव इस विषय पर भेंटवार्ता सुन रहे थे हम सभी। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर नूरुल इस्लाम, इनसे हम सब के लिए बातचीत किया मोहम्मद अली शबीर अंसारी ने। स्वास्थ्य वार्ता ये कार्यक्रम अब यहीं तक। बोल रहे हैं हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं गीत संगीत। ये सफर अब शुरू होता है तलविंदर की आवाज से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: जी हाँ, ये गीत संगीत की महफिल है। ट्यून कर रखा है आपने अपना ही फेवरेट चैनल FM 102.1 MHz। हैया इस एल्बम से कविता पौडवाल की आवाज़।

कविता पॉडवालू की आवाज के बाद हंसराज हंस की आवाज। सुनते रहिए गीत संगीत।

हंसराज हंस की आवाज के बाद जगजीत सिंह की आवाज, गीत संगीत चल रहा है आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

गुलाम अली के गाए इस गीत के साथ गीत संगीत का ये सफर अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र सुबह के 8 बजते ही समाचार प्रभात का आज का अंक 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इन्हें हम रिले करेंगे। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आप सभी सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से बस कुछ ही क्षणों में सुबह के 8:00 ही।

0: रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
6: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
4: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझू में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
6: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, दो एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। Union Minister JP Nadda says, government ready to discuss neat paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government, but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
5: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
9: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड. जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है.
8: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC हैज इन्फॉर्म दैट 16 मेट्रो स्टेशंस विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 7:30 AM टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इन द नेशनल कैपिटल. दीज इंक्लूड लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. Minister of State in the Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that government is aiming to bring at least 5 indigenous small modular nuclear reactors into operation by 2033. We have a report.
10: In a written reply in Lok Sabha, the minister said Parliament has enacted the Shanti Act 2025, which opens the nuclear energy sector to private participation. Dr. Singh said Bhabha Atomic Research Centre is developing a 220 megawatt Bharat Small Modular Reactor, a 55 megawatt reactor and a high-temperature gas-cooled reactor designed to produce hydrogen. Government has drawn up a roadmap for reaching the 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047, as announced in the Nuclear Energy Mission. The minister stated that as per the roadmap, the present nuclear power capacity of 8.78 gigawatts is expected to reach about 22 gigawatts by 2031-32 on progressive completion of projects presently at various stages of implementation. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
8: The center has approved 2 electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. We have details from our correspondent.
11: The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav in a written reply in the Lok Sabha yesterday. The government said India's electronic manufacturing sector has witnessed significant growth over the past decade, supported by reforms such as protection-linked incentive schemes, liberalized FDI norms, tax reforms and labor reforms. Electronics production has increased from nearly 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to around 13.1 lakh crore rupees in 2025-26, while exports have risen from about 38,000 crore rupees to 4.24 lakh crore rupees during the same period. Mobile phone production has also grown more than 30-fold to 6.27 lakh crore rupees, with exports touching 2.59 lakh crore rupees. India now manufactures nearly 99.2% of the mobile phones sold domestically, and the sector provides employment to nearly 25 lakh people, according to industry estimates. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicăsăr Dan, Interim Prime Minister Ele Bolvin, President of the Senate Mircea Abrudin, and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romanian-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic state visit to North Macedonia, one destination that stands out not only for its breathtaking beauty, but also for its rich history and global significance, Lake Ohrid. Let's hear more about this unique destination from our correspondent Subhashree Mahapatra, covering the president's visit.
12: Lake Ohrid is one of the Europe's oldest and deepest lakes. It lies on the border between North Macedonia and Albania and is famous for its exceptionally clean water, rich biodiversity and cultural heritage. More than 200 plant and animal species are found only in this lake, making it a globally important ecological site. The lake is also a UNESCO World Heritage Site. Lake Ohrid is often considered one of the Balkans' most beautiful destinations because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
8: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Silvanovska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani News in Skopje, Ms. Devkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
8: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
13: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
8: A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers.

0: oil again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार बस थोड़ी ही देर में
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान
4: यदि किसी को तेज बुखार सिर दर्द आंखों के पिछले हिस्से में दर्द नाक बहना उल्टी होना भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें मच्छरों से बचें घर के आसपास सफाई रखें पानी की टंकी गमले कूलर इत्यादि को साफ रखें हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं
5: तो सुन लो भाई सुन लो बहना डेंगू से तुम बच के रहना
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। 9 आगामी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक में हुए शामिल। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए 6 महीने में खाली होंगे गांव। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विशेष पंजीकरण अभियान में झारखंड पूरे देश में अव्वल। 46,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण कर बनाया रिकॉर्ड। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पूरे राज्य में बारिश का जताया पूर्वानुमान। आज रांची और धनबाद सहित 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 135वें डुरंट कप को लेकर भारी उत्साह। पहले ही दिन रिकॉर्ड 12,256 प्रवेश पत्र बांटे गए। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेपीएससी के अधिकारी श्वेता गुप्ता सहित 5 को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में जेपीएससी के अधिकारी श्वेता गुप्ता और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कर्मी शामिल हैं। सीआईडी इस मामले में संभावित परीक्षा अनियमितताओं की विस्तृत जांच कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा पर मचे विवाद के बीच मुख्य परीक्षा सहित अपनी 9 आगामी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। 2 जुलाई को जारी पीटी परीक्षा के परिणाम में कट ऑफ सार्वजनिक न करने और ओएमआर शीट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद छात्र संगठनों ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में घोटालों से भी बड़ा जांच घोटाला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। श्री दास का आरोप है कि बड़ी कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ इस्तीफे दिलाकर प्रभावशाली लोगों और नौकरशाहों को बचाया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण के लिए 6 महीने में गांवों का विस्थापन पूरा किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई टाइगर फाउंडेशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र ने पीटीआर में बाहर से 2 बाघिन और 1 बाघ लाने की मंजूरी दे दी है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि बैठक में वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन

0: पर्यटन, इको टूरिज्म तथा क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।
1: इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के आय व्यय के लेखेजों के आने वाले वित्तीय वर्ष में कार्य योजनाओं पर तमाम चीजों पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से कोर सेक्टर के दो कामों के लिए, एक वाटरशेड और दूसरा ग्रासलैंड डेवलपमेंट के लिए बजट के एलोकेशन बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति हुई और लाइवलीहुड के इश्यूज जो है उसको भी फोकस करने पर विचार हुआ।
0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अभियान में झारखंड देश में पहले स्थान पर रहा। राज्य ने 46,000 से अधिक महिलाओं का रिकॉर्ड पंजीकरण किया है। सरायकेला खरसांवा जिले राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। सरायकेला के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी।
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 15 जून से 15 जुलाई के बीच में नए एनरोलमेंट का एक टारगेट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा अभियान के तहत, जिसमें हमारे जिले को 1202 का टारगेट दिया गया था। इसके विरुद्ध हमारे जिले ने 2065 लाभुकों का एनरोलमेंट किया है, जो कि 171% है। झारखंड राज्य पूरे देश में मातृत्व योजना में सबसे अव्वल रहा है और जिसमें सरायकेला खरसावां जिला एनरोलमेंट के मामले में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पुरस्कार विजेता फिल्मकारों से मुलाकात कर राज्य को बड़ा फिल्म हब बनाने का भरोसा दिया। मंत्रालय में हुई भेंट में बीजू टोप्पो और निरंजन कुजूर सहित कई फिल्मकार शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना करते हुए फिल्म निर्माण, शूटिंग और तकनीकी प्रशिक्षण में हर संभव सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कल धनबाद का दौरा कर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य रूप से फुस बंगला तेजाब कांड, गुरु नानक कॉलेज, खालसा स्कूल, जिम्स अस्पताल में मरीज की मौत तथा शिक्षक नियुक्ति व पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई।
3: कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए और वो खालसा स्कूल में भी टीचर्स की नियुक्ति के संबंध में था, उसमें भी डीओ और डीएससी को मैंने कहा है कि इसमें जाएं और उसकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें, पूरा कराते उस पर जो है जो भी कमियां हैं, जो भी टीचर्स की कमी है उसको पूर्ण कराने का।
0: जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने जुगसलाई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी रेलवे पुल के पास से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक जिला बदर अपराधी और ड्रग्स पेडलर शामिल है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्तल, अतिरिक्त मैगजीन, जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। ये सभी आरोपी हत्या की योजना बना रहे थे।
4: अलग अलग जगह से कुछ लोगों की डायरेक्ट, कुछ लोगों की मुख्य आरोपी पर उनकी निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई और बहुत सारी चीजों की बरामदगी हुई। इसमें सबसे पहला नाम एक तड़ीपार अपराधी और ट्रक पेडलर मोहम्मद खुर्शीद, इसके साथ 5 अन्य लोग भी पकड़े गए। की गई पूछताछ के क्रम में इनके पास से भी बरामद हुई एक एक्स्ट्रा मैगजीन और एक जिंदा गोली। ये हमें खरकई रेलवे पुल से प्राप्त हुई, जो की पहला हमारा स्पॉट था। फिर दूसरी बरामदगी एक लोहे की देशी पिस्तल और 2 जिंदा गोली, ये हमें शिवघाट से प्राप्त।
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो की अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 23 जुलाई 1927 को ही भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, जो बाद में 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा और फिर अखिल भारतीय रेडियो बना। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया, जो अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को पूरी सार्थकता से साकार कर रहा है। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से पूरे राज्य में अच्छी बारिश होगी। विशेष रूप से आज राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और गुमला सहित 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। रांची स्थित मोराबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई से शुरू हो रहे 135वें डुरंड कप के ग्रुप सी के मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह है। दर्शकों की सुविधा के लिए 22 जुलाई से निशुल्क प्रवेश पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन रिकॉर्ड 12,256 प्रवेश पत्र बांटे गए और अब केवल 7,803 प्रवेश पत्र शेष बचे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में सीआईडी द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी और प्रस्तावित सभी परीक्षाओं के रद्द होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी बीएसओ गुड्डा से गिरफ्तार, 25 से होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित 9 परीक्षाएं स्थगित। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सहायक आचार्य के साथ 1,299 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सिक्किम में खूंटी के श्रमिक समेत राज्य के 3 की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, डीएसपीएमयू के शिक्षक और कर्मी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 आगामी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक में हुए शामिल, पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए 6 महीने में खाली होंगे गांव। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के विशेष पंजीकरण अभियान में झारखंड पूरे देश में अव्वल, 46,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण कर बनाया रिकॉर्ड। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय, मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पूरे राज्य में बारिश का जताया पूर्वानुमान, आज रांची और धनबाद सहित 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 135वें डुरंड कप को लेकर भारी उत्साह, पहले ही दिन रिकॉर्ड 12,256 प्रवेश पत्र बांटे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज आप इसकी पहली कड़ी सुनेंगे।
2: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, एसोसिएट लीगल सेंटर फॉर WTO स्टडीज IIFT। This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
3: Jurisprudence की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी jurisprudence हो, whether environmental or otherwise, the starting point is always the constitution. तो constitution किसी subject के बारे में क्या बोलता है पहले हम ये देखते हैं, and then we see, we look at the laws which are created as a result of the powers given by the constitution. But एक peculiar बात है Indian constitution की कि इसमें बहुत एक school of thought है जिनका मानना है कि environmental constitution environmentally blind tha in the very beginning when in 1950s it was adopted, because the term environment, environmental protection, ecological conservation, ye sare terms nahi the usme. But other school of thought on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean ki koi intent nahi tha constitution ka environment ko protect karne ka. Later on we'll see kaise article 21 jo ki hamesha se constitution ka part raha hai usko hi use karke hamari human rights and right to dignity under article 21 ko use karke environmental rights aage evolve hue hain. और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजंस की होती है वो 51AG में मेंशनड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन में उनके मैं होता है. इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मैंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, जिसमें सारा environment की सारी चीजें cover होती हैं, but that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं जो Water और Air Act के under काम करते हैं, and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner ki kitne

0: तरीके के राइट्स हैं, एनवायरमेंट लॉ कहाँ कहाँ से आ सकता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन इन द वेरी बिगिनिंग, उसमें मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स कि इफ यू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है। बिकॉज दिस वाज़ द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्तीचंद का केस, जिसमें देयर वाज़ एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहां पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए, बट वहां पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजंस हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था।
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने से, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देर वर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट होलसम एनवायरनमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल।

0: 21. So now what happens कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एम सी मेहता. ही वॉज अ बिग टाइम एनवायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी एनवायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट एमसी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देयर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्वड. So, for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case as and the oleum gas leak case. So, just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ye tanneries se jo pani, jo chemical factories or tanneries se jo waste nikal ke pani mein ja raha hai, which is polluting the Ganga river. Eventually, the court had to order to shut down these tanneries. So, this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, isme court ne pehli baar एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावरमन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज आप इसकी पहली कड़ी सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 8:58 और

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए के और बॉब की आवाजों में देशी बॉयज फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और प्रीतम के हैं तर्ज़।

अगला गाना हमने लिया है डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई, इस फिल्म से आवाजें हैं आकृति कक्कर और अपेक्षा दंडेकर की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डंडियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में पीके फिल्म का गाना। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना। गीतकार हैं इरशाद कामिल और तर्ज या रहमान की।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से

0: 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए,
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जबड़िया जोड़ी फिल्म से राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजें हैं, शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची के बोल और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।
3: तोहरी लच के जब कमरिया सारा जिला हिल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजा हसन, देव नेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गाना। गीतकार थे शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: ख्यालों में
1: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: आए हाय सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाई जान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
0: मां भाग रही थू मैं, काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या

0: चंदाना ये 16 साल तंदाना है तेरे ख्याल चंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईबी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में

0: उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
1: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
0: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
2: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।
3: बाप

0: भैया
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तुम्हां के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

0: महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।
1: बदकम्मत।

ஏன் விடுதிரா? பத்கம்மா பத்கம்மா.

0: ஆஷா பக்கம்மா பக்கம்மா
1: என் கண்ணா என் கண்ணா
0: பக்கம்மா பக்கம்மா
2: பக்கம்மா
3: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
4: वनकम जी,
1: ओ पहुंच जाइए ना।
4: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
1: क्या है?
4: खिड़की बंद करना जी।
1: क्यों?
4: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
1: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
4: अयो पहला बोला ना ऐसा बात। डाई बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
4: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला या ताली दे रहे हैं गाना गाना।
5: चल चल
4: देवी, तुम बदाना बदाना
5: खुशो। चलो
3: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
6: यक चतुर

0: सूर की तरह दिए ये सूर इन्ना आया है तो
1: चतुर नार अम छोड़ेगा नहीं
2: चतुर नार अम पकड़ कर रखेगा जी।

0: जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे सख्ता मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई

0: जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
1: तुम्हारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है। देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रो बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया।

दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
0: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा।

0: मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ।
1: अरे आहा जनाना
2: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर, कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज। न्यूज ऑन एयर इस मोबाइल ऐप पर भी आप हमें भारत के कोने कोने से सुन रहे हैं। ऐसे में दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत है हेलो हजारीबाग।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हेलो हेलो हजारीबाग, नमस्कार, जोहार हजारीबाग। सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज है विशेष दिवस 23 जुलाई का। माणिक चक्रवर्ती कहता है आप सबको शुभ हो, आप सबकी सुबह और शुभ हो जाए दिवस आपका। हेलो हजारीबाग में सबसे पहले एक छोटा सा सुविचार इससे शुरू करते हैं। आपका दोस्त माणिक कहता है ये कि संघर्ष नहीं होगा तो प्रगति भी नहीं होगी। जी हां, संघर्ष नहीं होगा तो प्रगति भी नहीं होगी। इस सुविचार के साथ लीजिए अब शुरू करते हैं ये सिलसिला जिसे हम सभी एक साथ कह उठते हैं। भाई कह दिया आपने, मैं भी कह दूं हेलो हजारीबाग। आज तापमान और मौसम का हाल सबसे पहले जान लेते हैं। भाई बारिश का समय तो शुरू हो चुका है और आज दिन 28.5 डिग्री अधिकतम सेल्सियस लिए रहेगा और रात 23 डिग्री न्यूनतम सेल्सियस के साथ रहेगा। आज बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना रहेगी और तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है। छाता और जो हम कहते हैं रेनकोट यानी बरसाती हाथ में लिए चलिएगा, साथ में लिए चलिएगा। शहर में आज भगवद गीता पाठ का किया जाएगा आयोजन झील सेंटर में। समय है संध्या 6:30 से। SIR की समीक्षा बैठक आज 11 बजे से होनी है। अब जो चीज सबसे पहले आ रही है हमारे पायदान में आज, वो है आज का इतिहास। तो लीजिए सबसे पहले आज 23 जुलाई को हमारे भारत और दुनिया में क्या क्या घटा, किन व्यक्तियों ने, किन विभूतियों ने हमें अलविदा कहा आज ही के दिन और किन विभूतियों ने जन्म लिया, एक छोटा सा ब्यौरा आप सब तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले भाई कहना तो पड़ेगा ही हेलो हजारीबाग। सुनना शुरू कर चुके हैं आप माणिक चक्रवर्ती के साथ। साथियों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे आज भारत में मनाया जा रहा है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का हम मना रहे हैं। बाद में यही प्रसारण सेवा विकसित होकर आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो बन गई, जिसने देश की भाषा, संस्कृति, संगीत, शिक्षा और समाचार को जन जन तक पहुंचाया। सभी सुनने वाले सुधी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आज विश्व व्हेल और डॉल्फिन दिवस भी है, तो समुद्री जीवों विशेषकर व्हेल और डॉल्फिन के संरक्षण तथा समुद्री पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से आज ये दिवस हम सभी मना रहे हैं। 23 जुलाई को भारत में हुई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं में भारत में 1927 को भारत में पहली बार नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई और 1856 को महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। 1906 को अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 जुलाई आज का ही दिन भारतीय स्वाभिमान, राष्ट्रवाद और बलिदान का प्रतीक। अब विश्व इतिहास में 23 जुलाई की प्रमुख घटनाएं। विश्व इतिहास में आज ही के दिन 1829 की अगर बात करें तो अमेरिका में विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपराइटर के प्रारंभिक स्वरूप का पेटेंट कराया। 1903 को फोर्ट मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बेची और 1952 को मिस्र में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के नेतृत्व में क्रांति हुई जिसने आगे चलकर राजशाही का अंत कर दिया। 1995 की ओर दृष्टि करें तो आज ही के दिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी सार्वजनिक की और 2005 में मिस्र के शर्म अल शेख में भीषण बम विस्फोट हुआ। और अब बारी 23 जुलाई को जन्मे महान व्यक्तित्व के बारे में जानने की। मैंने बता दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1856 को जन्मे थे, 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी और महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार थे। प्रसिद्ध नारा था इनका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अब चंद्रशेखर आजाद की बात, आज ही के दिन 1906 को इनका जन्म हुआ, 1931 को ये विदा हुए। महान क्रांतिकारी थे ये, काकोरी कांड और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और संकल्प इनका था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। और अन्य प्रमुख हस्तियों का जन्म अगर देखें तो आज के दिन व्लादिमीर कोस्मा ज्वेरिनिक ने जन्म लिया था। टेलीविजन तकनीक के ये अग्रणी वैज्ञानिक थे और डैनियल रेडक्लिफ ने, ब्रिटिश अभिनेता जो थे हैरी पॉटर श्रृंखला के लिए जो प्रसिद्ध थे, उनका भी जन्म हुआ था। और 23 जुलाई को जिन महान विभूति ने दुनिया को अलविदा कहा उनमें सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर थे, 1978 को इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। और प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये, नाटककार एवं आकाशवाणी के महान प्रशासक थे। भारतीय रेडियो और रंगमंच को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था जगदीश चंद्र माथुर ने। सलमान गफूर, विभिन्न स्रोतों से जो उल्लेखित सामने आ रहा है, वो साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व थे। इन्होंने भी दुनिया को अलविदा कहा था आज 23 जुलाई को। अब 23 जुलाई का महत्व क्या है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, लोकमान्य तिलक की जयंती है, चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता, विचार और जनसंचार का ऐतिहासिक संगम है आज के दिन। तो श्रोताओं, हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, 23 जुलाई केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। यह दिन हमें लोकमान्य तिलक के स्वराज के संकल्प, चंद्रशेखर आजाद के अदम्य साहस और रेडियो प्रसारण की उस अमर परंपरा की याद दिला रहा है जिसने करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। आइए इन महान विभूतियों को शत शत नमन करें और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, इससे पहले कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, क्या है इसका इतिहास और महत्व, उससे पहले मोहम्मद रफी साहब का एक गीत याद आ रहा है, सुन लीजिए।

0: जी बिल्कुल, हमने आवाज दी है तभी तो। हेलो हजारीबाग के श्रोता दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इसी आवाज के साथ 23 जुलाई का दिन आ गया। भारतीय जनसंचार के इतिहास में बेहद खास है ये दिन। हमें उस सफर की ये याद दिला रहा है जिसने देश के करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, जानकारी दी, शिक्षा दी, मनोरंजन दिया और कठिन समय में भरोसा भी दिया। यही वो कारण है कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आइए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है, इनका इतिहास क्या है और आज के डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैंने कल टेलीफोनिक बातचीत की इंटरव्यू लिया कार्यक्रम अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आकाशवाणी में भी ये थे और रांची से इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ली, पंकज मित्र से। उससे पहले सुधी श्रोता कदमा हजारीबाग से हमारे साथ हैं कुणाल सिंह। तो पहले इनसे बातचीत जो हुई है और इनके संदेश जो है वो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो हजारीबाग, अपने दोस्त मानी के साथ तो कहना ही बनता है ना।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो हजारीबाग के इस टीम के लोगों के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा, मेरे द्वारा और सभी आकाशवाणी परिवार के द्वारा आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आपको भी मानिक भैया।
1: तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है
2: ये, यस, यस।
1: तो अपना

0: परिचय देते हुए बताइए कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस से आप क्या समझ रहे हैं और इसे कैसे मना रहे हैं।
1: हाँ सर, मैं हजारीबाग के रामनगर कदमा से रहने वाला हूँ
0: जी।
1: मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह है सर। सर, ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो 1927 में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा मुंबई के स्टेशन से किया गया था, प्रसारण पहली बार किया गया सर, जिसके कारण से ही इसे 23 जुलाई को मनाया जाता है जो 1927 में हुआ था सर।
0: मेरा कहने का मतलब है कि प्रसारण में कितना बदलाव आया है उस समय से अब तक?
1: बहुत ही ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। दूर दराज इलाके में अब तो हम लोग 21वीं सदी में है
0: जी।
1: तो अभी तो सबके पास मोबाइल फोन सब कुछ हो गया है। उस समय से लगभग हमको मुझे लगता है कि 20वीं सदी तक किसी के पास फोन तो दूर, मतलब जो टेलीफोन भी था वो भी नहीं था और ये आपका टीवी भी नहीं था
0: बिल्कुल,
1: जिसमें बिना तार का यह कार्यक्रम पहुंचाना और दूर दराज इलाकों तक ये खबर पहुंचाना बहुत बड़ा काम था। और इसमें सभी लोग जो इंटरटेनमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है सभी चीज का जानकारी आपको एकदम रेडियो के माध्यम से सभी जगह दूर दराज इलाकों में एकदम इंटीरियर इलाका जैसे होता है, जैसे गांव देहात या जहां पर कुछ नहीं है, लाइन बत्ती नहीं है, वहां यह रेडियो 4 बैटरी के द्वारा चल रहा है और पूरी जानकारी लोगों के पास पहुंच रहा है।
0: खेतों में भी देखा करते थे कि खेतों में भी चल रहा है और वो सड़क जो है वो उसी अनुसार काम भी कर रहे हैं लोग, संगीत के साथ तो कभी जानकारियों के साथ,
1: मतलब अपना अपना काम भी कर रहे हैं और जो धुन है उसका भी मजा आ रहा
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है कुणाल सिंह जी, आप थोड़ा सा चलते चलते अपना परिचय दे दें, क्या कर रहे हैं आप और प्रसारण के विषय में इतना सब कुछ बताना, रेडियो को इस तरह से सुनना, कब से सुन रहे हैं आप रेडियो?
1: हम सर बच्चे से सुन रहे हैं और आपका जो फोन इन फरमाइश जो कार्यक्रम था हजारीबाग में उसमें पंकज भैया थे
0: जी जी,
1: तो हम लोग तार फोन लगाने के लिए परेशान रहते थे कि दोपहर में 3 बजे या 2:30 बजे शायद रिकॉर्डिंग का टाइम रहता था
0: जी जी,
1: तो हम लोग हमेशा सुनते थे रेडियो को।
0: उसी समय प्रसारण दिवस है कुणाल सिंह जी।
1: हाँ सर,
0: प्रसारण दिवस है और आपने बड़ी अच्छी बात कही है, रेडियो के आप श्रोता हैं और भी श्रोता बनाते रहते हैं। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो हजारीबाग से जुड़े रह सकते हैं और प्रसारण दिवस की चलते चलते बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई और पंकज मित्रा की जहां तक बात बताई वो रिटायर्ड हो चुके हैं और बस आपसे बातचीत करने के बाद अब उनसे ही बातचीत हम करने जा रहे हैं, तो आप हेलो हजारीबाग सुनते रहिए।
1: यस सर
0: तो सुनते रहिए, देखिए अब आगे आ रहा है पंकज मित्र से की गई बात कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, उनके बारे में वो क्या कहते हैं। आइए कुणाल सिंह जी, अब हम साथ में मिलकर सुनते हैं।
1: यस सर,
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर, आपको भी और सभी श्रोताओं को।
0: पंकज जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को और आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को और प्रसारण कर्मियों को, जितने भी लोग रेडियो प्रसारण से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं इस दिवस पर।
0: मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे जो नवीन श्रोता है उनको दें।
2: मेरा नाम पंकज मित्र है, मैं आकाशवाणी में लंबे समय तक सेवारत रहा हूं
0: जी,
2: और अब सेवानिवृत्त हूं। कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मैं रहा आकाशवाणी हजारीबाग, आकाशवाणी रांची, आकाशवाणी शेखपुर में मैंने काम किया है। और ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी
0: जी
2: उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का महत्व इसलिए है कि जब प्रसारण की दुनिया में रेडियो का प्रवेश होता है
0: जी,
2: तो जैसे श्रोताओं के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है।
0: बिल्कुल,
2: खासतौर पर आकाशवाणी तो बाद में बना, पहले तो ये दूसरे नाम से शुरू हुआ था, लेकिन आकाशवाणी 1936 के बाद इसका नामकरण हुआ। रेडियो प्रसारण जो है वो आज भी इतने माध्यम हो जाने के बाद भी
0: जी जी
2: सबसे सहज, सुलभ और एक ऐसा माध्यम है जिस जो सुदूर में बैठे हुए जो जिसको गांधी जी का आखिरी आदमी कहते थे
0: जी,
2: वहां तक उसकी बात पहुंच सके, लोगों की बात पहुंच सके, सरकार और आम लोगों के बीच में एक सेतु का काम करती है ये रेडियो की दुनिया।
0: तो कह सकते हैं पंकज जी की ये ऐतिहासिक महत्व है।
2: बहुत ही इसका ऐतिहासिक महत्व है, और खासतौर पर रेडियो प्रसारण के बारे में आमतौर पर आप भी सुनते होंगे
0: जी,
2: और लोग भी कहते हैं कि अब रेडियो कौन सुनता है, लेकिन जो FM टेक्नोलॉजी आई है उसके बाद से रेडियो सुनने वालों की संख्या काफी बढ़ी है
0: जी, बिल्कुल,
2: और जो ऐप पर रेडियो सुनने की सुविधा हो गई है।
0: हाँ,
2: तो आप जानते हैं कि आकाशवाणी हजारीबाग जो है वो अमेरिका में भी सुना जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल,
2: इसीलिए इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है,
0: विस्तृत हुआ है,
2: और पहुंच के स्तर पर हमारी जो सुनने वालों की संख्या है उसके स्तर पर जो हमारी आकाशवाणी की रेडियो की जो जो पहुंच है वो अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं लोग।
0: यहाँ देखते हैं कि पंकज सर कि जो डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं, पॉडकास्टिंग है, सोशल मीडिया है, बहुत

0: डिजिटल मंच अब मौजूद है, तो रेडियो की जो प्रासंगिकता है, विश्वसनीयता है, उसको आप किस रूप में आज देखेंगे इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन?
1: कुछ चीजों में रेडियो का मुकाबला बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसे कि ये बहुत ही सहज, सरल और सस्ता माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: आपको किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी एक जगह पर बैठ करके, जैसे आपको टेलीविजन देखना पड़ता है, उस तरह से आप चलते फिरते भी रेडियो सुन सकते हैं, अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं।
0: ये सुविधा जो है वो हमेशा से श्रोताओं के पास रहेगी।
1: जी जी, एक बहुत बड़ी सुविधा है ये। और दूसरा ये कि ये आपकी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता है। आप सुनते हैं और कल्पना करते हैं।
0: कल्पना,
1: जैसे रेडियो पे कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हो, 1,00,000 श्रोता सुन रहे हो, तो हर के दिमाग में 1,00,000 छवि बनती है उस सुंदर लड़की की, अलग अलग तस्वीरें बनती
0: है। बात है,
1: तो इसलिए एक कल्पना शक्ति के आपको बहुत बढ़ावा देती है। और आजकल की दुनिया में कल्पना शक्ति का बहुत ज्यादा अभाव,
0: बहुत ज्यादा। आपने प्रसारण सेवा में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है, और आपके अनुभव जो है वो रेडियो में बहुत सारे समाज, संस्कृति, आम जनजीवन को भी अगर देखे तो जोड़ने का जो चला है सिलसिला वो हुआ है, तो सबसे बड़ी भूमिका किस प्रकार से निभाई है और क्या रह गया? अभी रिटायरमेंट में आप है, तो ऐसा लगता है कि क्या रह गया जो अभी पूरा होते देख रहे हैं आप, या देखेंगे, देखना चाहेंगे?
1: तकनीकी रूप से बहुत चीजें समृद्ध हुई है, नई नई चीजें आई है, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है
0: जी,
1: प्रसारण का बहुत सारा तरीका नया बदला है। खासतौर पर जो नए लोग आए हैं, इससे जुड़े हैं, वो लोग अपनी तरफ से एक नई दुनिया लेकर के आए हैं
0: जी,
1: और हर तरह के प्रोफेशन के लोग इसमें जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये एक बहुत बड़ा
0: अच्छा संकेत
1: है। एक बहुत ही अच्छा संकेत है, और आगे आने वाले दिनों में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों तक पहुंचेगा भी
0: जी।
1: ये इसकी पहुंच जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत
0: बिल्कुल
1: ये चीजें पहुंचती है, और खासतौर पर जो आपदा के अवसर होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, वैसे मौकों पर सिर्फ रेडियो ही आपके काम आता है।
0: तो चलते चलते पंकज सर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर जो देशभर के श्रोता है, विशेषकर हम कहेंगे कि युवा जो है वो आपके क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले जो विद्यार्थी, उनको क्या संदेश देंगे सर?
1: ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी रेडियो से जुड़े
0: जी,
1: और रेडियो के कार्यक्रम सुने। रेडियो के कार्यक्रमों की गुणवत्ता अभी भी बहुत स्तरीय है, खासतौर पर अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तब भी रेडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है
0: जी।
1: तो रेडियो का बहुत ज्यादा तरह तरह के उपयोग है, रेडियो से आप जुड़े, और इसमें आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होता, जैसे सोशल मीडिया पर आप ज्यादा देर रहते हैं तो वक्त बर्बाद होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक तरफ मैथ्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं और एक तरफ रेडियो भी बज रहा है,
0: रेडियो भी,
1: ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता,
0: डिस्टर्ब नहीं करता है। और अगर भविष्य की बात करूं मैं, तो प्रसारण के क्षेत्र में भविष्य बनाना आज के समय में,
1: ये बहुत ही आगे आने वाले दिनों में इतने तरह के उपादान हो गए हैं, इतने तरह के रास्ते हो गए हैं,
0: जैसे सैटेलाइट रेडियो भी है, और
1: बहुत विस्तार हो रहा है, बहुत तरह के रेडियो का बहुत सारा विस्तार भी हुआ है
0: जी।
1: और खासतौर पर जो मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, रेडियो से जुड़े हुए, उसके उसमें बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे अवसर नए नए पैदा हो रहे हैं, उससे युवा अगर जुड़ते हैं तो उनको करियर के रूप में भी इसको अपना सकते हैं, और एक बहुत एक स्वतंत्र और स्वस्थ एक देश का निर्माण में योगदान भी दे सकते हैं,
0: और साथ में वो जो ऐतिहासिकता है और सांस्कृतिकपन है उसकी भी झलक मिलती रहेगी, और साथ साथ में रेडियो जो है वो अपनी जो गरिमा है वो बना करके रखेगा। तो पंकज जी, अंत में आकाशवाणी हजारीबाग के श्रोताओं को, आप अपने पुराने साथियों को क्या दो शब्द कहना चाहेंगे आज के इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के विशेष अवसर पर?
1: इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि रेडियो प्रसारण के प्रति अगर आप जरा सा भी आपके मन में संदेह है कि रेडियो का प्रसारण आगे नहीं चल पाएगा या कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो उस अंदेशे को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: आगे आने वाले दिनों में रेडियो प्रसारण और भी मजबूत होगा, और श्रोताओं की सेवा में लगा हुआ रहेगा रेडियो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, और आज श्रोता राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आपकी बहुत सारी बातों को जान पाए, और साथ में जो युवाओं के बारे में ज्यादा आपने बातचीत की उससे भी हम उत्साहित हुए। तो आज के दिन यही चाहिए था हमें कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है तो सब जगह उत्साह उत्साह हो, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हेलो हजारीबाग के तमाम श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी के पूरे परिवार की ओर से, और माणिक चक्रवर्ती की ओर से भी लीजिए सर।
1: बहुत शुक्रिया आप लोगों को।
0: तो ये थे पंकज मित्र, जो आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र में भी थे कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, रांची में भी रहे, जैसा इन्होंने बताया कि जमशेदपुर में भी रहे, तो इन्होंने अपनी बात आज विशेष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन दी है। उससे पहले जो हमारे सुधी श्रोता थे कदमा हजारीबाग के, कुणाल सिंह ने भी अपनी बात रखी। तो श्रोताओं, जो आज 23 जुलाई है ना,

ये भारत में पहली बार नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का दिन है। उस समय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई, जो तत्कालीन समय में बंबई था, उससे अपना प्रसारण शुरू किया। यह भारतीय प्रसारण इतिहास का पहला महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जिसे आज हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। वर्षों से आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक समाचार, शिक्षा, संस्कृति, संगीत, साहित्य और जनहित की जानकारी पहुंचाई। इसी ऐतिहासिक शुरुआत की स्मृति में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहे हैं हम। सोचिए, एक समय ऐसा भी था जब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल और ना ही सोशल मीडिया। ऐसे समय में रेडियो ही लोगों की दुनिया से जुड़ने की सबसे बड़ी खिड़की थी। गांव हो या शहर, खेत हो या कारखाना, सैनिकों की चौकी हो या विद्यार्थियों का छात्रावास, हर जगह रेडियो की आवाज लोगों तक पहुंचती थी। रेडियो ने केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि देश को जागरूक भी बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्रीय विकास तक हर दौर में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका रखी। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की संवाहक भी है। यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत, लोक गीत, साहित्य, किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम, युवाओं के लिए प्रेरक चर्चाएं, महिलाओं और बच्चों के लिए उपयोगी जानकारी, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार, विज्ञापन और तकनीक और ना जाने क्या क्या अनेकों विषयों को स्थान मिलता रहा। आपदा के समय भी आकाशवाणी ने लोगों तक सबसे पहले विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का भी कार्य किया। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी रेडियो की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि इसका स्वरूप और आधुनिक हुआ। आज आप एफएम रेडियो के साथ साथ मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से भी आकाशवाणी के कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं। यानी तकनीक बदली है, लेकिन भरोसे की आवाज आज भी वही है। इसके महत्व के बारे में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें याद दिला रहा है कि सही सूचना, सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत। यह दिन उन उद्घोषकों, समाचार वाचकों, तकनीकी विशेषज्ञों, अभियंताओं, संगीतकारों, लेखकों और पर्दे के पीछे काम करने वाले हजारों कर्मियों को भी सम्मान देने का अवसर है, जिनकी मेहनत से प्रसारण की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है।

और अब जाते जाते महान कवि हरिवंश राय बच्चन की भावना से प्रेरित ये पंक्तियां सुना जाता हूँ। शब्द जब जन जन तक पहुंचते हैं तो केवल ध्वनि नहीं रहते, वे बन जाते हैं विश्वास। और विश्वास ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी विश्वास के साथ राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं माणिक चक्रवर्ती, आप सुनते रहिए आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका प्रिय केंद्र और प्रिय कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। और अब समय उस शब्द को पकड़ने का जिसे कहते हैं धक धक धक धक धक धक धक धक, धक, धक, धक, धक, धक।

हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, अब सभी जरूरी अपडेट्स और जानकारियां तो ले ही रहे हैं हम, तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर एक धड़कन है, हर एहसास में एक कहानी है और हर कहानी में छिपा है एक गीत। मैं हूं आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती और आप सुन रहे हैं विशेष संगीत प्रस्तुति धक धक करता जिया क्यों मोरा। श्रोताओं, इंसान जब इस दुनिया में पहली सांस लेता है उसी पल से उसके भीतर एक संगीत बजना शुरू हो जाता है। वह संगीत है दिल की धड़कनों का। यही धड़कन कभी खुशी में तेज हो जाती है, कभी डर से सहम जाती है, कभी पहली

तो आइए ना आज इन्हीं धड़कनों की डोर थामकर निकलते हैं एक अनोखी संगीत यात्रा पर। देखते हैं आपकी धड़कन किस गीत में अपनी कहानी ढूंढती है, किस धुन में अपनी यादें और किस सुर में अपना प्यार बजाती है।

भाई धड़कनों का सिलसिला अब और तेज होने लगा है। दिल तो पास जाना चाहता है लेकिन शर्म और संकोच बार बार कदम रोक लेते हैं। यही तो प्यार की सबसे प्यारी अदा और मीठी सी कश्मकश है। सुनिए तो, दिल बुलाता भी है और दूर रहने की हिदायत भी देता है।

अब तक दिल धड़क रहा था, नजरें झुक रही थीं, बातें अधूरी थीं, लेकिन हर प्रेम कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब इनकार शब्दों से नहीं धड़कनों से होता है। दिल दिल से मिलता है और फिर होंठ कुछ कहे या ना कहे, धड़कनें सब कुछ कह देती हैं। बस यही पल है ये। यकीन मानिए, जैसे ही ये गीत शुरू होगा, आपकी जुबान भी अपने आप गुनगुनाने लगेंगी।

धड़कनों ने इजहार तो कर दिया, मगर प्रेम की कहानी यहीं कहां रुकती है। अब दिल की हर धड़कन, हर आहट और हर सांस को किसी एक नाम की आदत बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिल कह रहा हो, अब पुरानी धड़कनों का अंदाज छोड़ दो, मुझे जीने का एक नया सलीका सिखा दो।

दिल की धड़कनों का अपना एक मौसम होता है और जब प्रेम की हवा में यादों की खुशबू घुलने लगे तो लगता है जैसे आसमान भी उसी एहसास में भीगने को तैयार है। कभी धड़कनें इजहार बनती हैं तो कभी बादलों की पहली दस्तक के साथ वे और भी तेज सुनाई देने लगती हैं। जरा ठहरिए, क्या आपको भी कहीं दूर से बरसाती फुहारों की आहट सुनाई दे रही है? है ना? तो आइए दिल की धड़कनों को सावन की रिमझिम के साथ महसूस करते हैं भीगते हुए।

हेलो हजारीबाग में आज विशेष शब्द संगीत की प्रस्तुति चल रही है, सफर चल रहा है, आवाज धक धक करता जिया क्यों मेरा।

कहते हैं प्रेम की सबसे सच्ची भाषा शब्द नहीं धड़कने होती हैं। पूरी महफिल खामोश हो जाए तब भी दिल अपनी कहानी कहता रहता है, कहता रहता है। आज की इस संगीत यात्रा में हमने धड़कनों के कई रंग महसूस किए, पहली आहट, पहला इजहार, सावन की भीगी दस्तक और अब एक वह एहसास जहां दिल किसी एक के नाम की धुन में बस धुन बन जाता है। इसी मधुर एहसास के साथ हमारी आज की ये महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। उम्मीद है इस आखिरी धड़कन की गूंज आपके दिल में देर तक मुस्कुराती रहेगी। सुनिए और अपने दिल को धड़कनों की इस खूबसूरत दास्तान से दास्तान के हवाले कर दीजिए।

मेरे साथियों, आज के इस पूरे धक धक धक धक वाले सफर के बाद शायद धक धक करता जिया क्यों मोरा, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। भाई मैं तो ये समझ रहा हूँ कि दिल इसलिए धड़कता है क्योंकि उसमें सिर्फ खून नहीं, सपने, रिश्ते, उम्मीदें और अपनों के लिए बेशुमार मोहब्बत भी बहती है। जब कोई एहसास इन धड़कनों को छू लेता है तो यही धड़कनें जिंदगी का सबसे मधुर गीत संगीत बन जाती है। इन्हीं धड़कनों की मिठास हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और हां, याद रखिएगा, अपना और अपनों के दिल का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सभी सुन रहे थे हेलो हजारीबाग अपने दोस्त मानिक के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 मेगाहर्ट्ज। सुबह के 11 बज कुछ ही सेकंड्स के बाद बजने को है 11 बजते ही विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आप सभी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, अभी आपने बैक टू बैक दो कलाम सुने। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में कलाम उम्मीद होगी कोई, जिसे हमने लिया था दिल पड़ोसी है एल्बम से। इसके ठीक पहले आपने सुना शायराना एल्बम से मिर्जा गालिब का कलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम यारों रब से दुआ करो, इसका कलाम अखिल सचदेव ने गाया है, इसे रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने लिखा, मीत ब्रदर्स और निखिल विनय की तर्ज है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। हमारी अगली पेशकश शुभा मुदगल की आवाज में एल्बम अली मोरे अंगना से। शुभा मुदगल की आवाज है और गीत भी उन्हीं की रचना है और संगीत है जवाहर वत्तल का।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, एक विशेष सूचना। जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए शोभा गोटू की आवाज में ये रचना। इसे लिया है हमने एल्बम द जीनियस ऑफ शोभा गोटू से और इसे संगीतबद्ध भी किया है शोभा गोटू ने ही। ये एक पारंपरिक रचना है।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं, गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कैफी आजमी की गीत रचना एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के। रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है चौधवी का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को, और इनसे

बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार OP नैयर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप लोग। अरे भाई, आज तो हम किसी विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो अच्छे ही होंगे और तैयार भी हैं आप, है ना? हाँ, आज सुरीला सफर एक ऐसा सफर होगा जो एक ऐतिहासिक यात्रा बन जाएगा, है ना? आज इस सफर में हम होंगे, आप होंगे और साथ में होगा हमारा प्यारा सा साथी, हमारा रेडियो, हमारा ट्रांजिस्टर या हमारा मोबाइल, जिस पर न्यूज ऑन AIR ऐप हम डाउनलोड कर विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे, है ना? एक ऐसा साथी जो हमारे लिए देश विदेश की ताजा खबर, मौसम की जानकारियां, सरकारी नीतियां, संगीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और भी न जाने क्या क्या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाता है। तो आज सुरीला सफर हमारे इस प्यारे साथी के साथ हम पूरा करने वाले हैं। सचमुच आज का ये सफर में हम होंगे, आप होंगे और होगा हमारा प्यारा साथी, हमारा रेडियो। तो बताइए, तैयार है ना आप हमारे साथ चलने के लिए? मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार है। आज का टेक्स्ट भी हम आपको पढ़ देते हैं ताकि ये सफर और आसान हो जाए। और इस पूरे सफर के दौरान आज हम इन्हीं बातों पर अपना और आपका ध्यान रखेंगे, ध्यान केंद्रित भी करेंगे। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज कुछ ऐसे गीत जिन्हें सुनकर हम ठिटक गए हों। आप भी बता सकते हैं वो कौन से गीत थे जिन्हें सुनकर आप ठिटक गए हमेशा और आज भी ठिटक जाते हैं, या सिहर जाते हैं, या सहम जाते हैं, या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या आप खिलखिला उठते हैं, या आप मजा महसूस करते हैं, बहुत ही प्यारापन महसूस करते हैं किसी गीत को सुनकर। उन सभी गीतों का जिक्र कम से कम शब्दों में आप कर सकते हैं। हाँ, वो गीत जो हमारी जिंदगी से जुड़ गए हो। तो आज सुरीला सफर भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के गानों और गायकों का सफर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम आज बात करने वाले हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की क्या भूमिका रही, आपके जीवन में रेडियो क्या महत्व रखता है, रेडियो का महत्व क्या है, रेडियो का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विकास में रेडियो प्रसारण की भूमिका क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी ने ऐतिहासिक और अतुल्य योगदान दिया है, क्या है वो योगदान, बस आज सुरीला सफर इन्हीं खास बातों पर। तो आज के शब्द तो आपने नोट कर ही लिए हैं जिन पर हमने आज के गीत चुने हैं। आज के कुछ शब्द हैं बाबुल, वंदे, बरस, गुलबदन, प्यार, बेवफा, मन, आ जाओ, दाग, मुहे, हृदय और दुल्हनिया। तो ये हैं आज के शब्द जिन पर हमारे साथियों ने यानी आपने गीत लिखकर भेजे हैं और बहुत सारे गीत इन शब्दों से मेल खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा और सुरीला सफर इस गीत के साथ।

0: यह अवस्थी केएल सहगल की और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। पारंपरिक गीत रचना थी और संगीतकार थी आरसी बोराल। इस आवाज को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस आवाज को सुनना चाहते थे कार्यक्रम की शुरुआत में। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो भाई ये गाना जरूर बजने वाला है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो जब रेडियो की बात हो, रेडियो की शुरुआत हो और केएल सहगल साहब की आवाज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब हर कार्यक्रम में केएल सहगल साहब गूंजते थे और कुछ कार्यक्रमों में तो कुछ आकाशवाणी के केंद्रों में तो केएल सहगल साहब का गीत आखिर में जरूर बजता था, और उस गीत को सुनने के लिए न जाने कितने लोग उस आकाशवाणी केंद्र को सुनना पसंद करते थे। आपको भी वो याद ताजा होगी। फिलहाल हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं उनका मैं वाचन करती हूं, उनके संदेशों का। आप लिखते हैं कि रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अंतरंग और भावनात्मक साथी है। ये दृष्टिहीन होने के बाद भी शब्दों के माध्यम से मस्तिष्क में सुंदर चित्र उकेरने की क्षमता रखता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के इस युग में रेडियो की खूबी यह है कि ये केवल ध्वनि पर निर्भर है। जब उद्घोषक अपनी गर्म जोशी भरी आवाज में श्रोता से बात करता है तो एक ऐसा आभासी जुड़ाव महसूस होता है मानो वो सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहा हो। ये वो माध्यम है जो हमें बांधता भी है और आजादी भी देता है। रेडियो हमारा जीवन संगीत है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे या अब के बरस भेजो भैया, कुछ गाने इस तरह के आपने लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे गीत आपकी पसंद से आज बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का इंतजार है, मंदाकिनी जोशी की आवाज में मैं गाने सुनने को तैयार हूं।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, पेपर लीक में शामिल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए देश में बनाए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। सिक्किम टनल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में बीसीसीएल के कोल नीर प्रोजेक्ट का किया ऑनलाइन उद्घाटन, मिलेगा शुद्ध पेयजल। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी विमानन पाठ्यक्रमों की सौगात, रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला एएमई और एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर, और रांची के खेलगांव में आज से द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, सभी 24 जिलों के 576 स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का

0: निर्माण करेगी। आज दिए इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनके हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम के नामची में तीस्ता जल विद्युत परियोजना सुरंग हादसे में झारखंड के श्रमिकों के प्रभावित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ट्विटर पर साझा किए गए संदेश में मुख्यमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग से प्रभावित झारखंडी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लगातार सिक्किम प्रशासन के संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में बीसीसीएल के कोल नीर प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत खदानों से निकलने वाले पानी को शुद्ध कर स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बीसीसीएल के निदेशक मानव संसाधन मुरली कृष्ण रमैया ने बताया कि इस पहल से कोयलांचल क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे हजारों परिवारों को स्वच्छ पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1: पर्यावरण के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो ये 2 करोड़+ में एक हम प्लांट्स लेकर के आए हैं। ये 24 KLD का प्लांट है। कोई भी आदमी अपने 20 KLD का आकर के घर करके यहाँ फैसिलिटी रहेगा नियर बाई विलेजर्स के लिए और नियर बाई हमारे पब्लिसर्स के लिए।
0: रांची में पूर्वी भारत का पहला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस कोर्स नवंबर में राज्य स्थापना दिवस पर शुरू होगा। पीपीपी मॉडल के तहत धनबाद के फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में संचालित होने वाले इस 3 वर्षीय एएमई कोर्स की फीस 6 लाख रुपए है। एयर होस्टेस के 2 कोर्स होंगे जिसमें ग्रूमिंग और स्विमिंग ट्रेनिंग भी शामिल है। विमानन क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के शुरुआत से पूर्व देवघर नगर निगम सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अलर्ट मोड में है। अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार के अनुसार 30 जुलाई से शुरू होने वाले मेले के लिए मंदिर परिसर, शिवगंगा और प्रमुख मार्गों पर व्यापक सफाई व जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और गंदगी को देखते हुए नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं।
2: परिसर की जहाँ तक बात है उस पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। सिद्धगंगा में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जितने भी इंक्रोचमेंट इसको चाहे वो नाला पे हो, शौचालय पे हो, चाहे सरकारी संपत्ति के, सारे अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है और सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। वो पूरे सिद्धगंगा में एक नेट का भी मार्किंग कर दिया गया ताकि जो खतरे के निशान से वो श्रद्धालु न जाए।
0: टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल नया सैटेलाइट स्टेशन विकसित करेगा। रेलवे इंजीनियरों की टीम ने गोविंदपुर, मकदमपुर और हाता क्षेत्र का सर्वे किया जिसमें गोविंदपुर मकदमपुर क्षेत्र को सबसे उपयुक्त पाया गया है। रोजाना 52 जोड़ी ट्रेनों और 60,000 यात्रियों को संभालने वाले टाटानगर स्टेशन को इस नए स्टेशन से आउटर पर ट्रेनें रुकने की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा आज देवघर और दुमका जिले के दौरे पर जा रही हैं। वह दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नक्सल गतिविधियों और लंबित मामलों की समीक्षा करेंगी। डीजीपी के इस अहम दौरे को लेकर देवघर और दुमका पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोलकाता के 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोडरमा के डॉक्टर बीरेंद्र कुमार और विपिन चाते को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री को ज्योरी मेंशन और तुमसे प्यार हो गया को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ज्योरी अवार्ड मिला। यह फिल्में सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित है। पुरस्कार मिलने पर डॉक्टर बीरेंद्र कुमार

0: ने खुशी जताते हुए कहा कि लगातार मिल रहे सम्मान से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
1: हम लोग उस म्यूजिक वीडियो के द्वारा संदेश दिए हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये कोई फन नहीं है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इंड तक निभाना है। दूसरा है लुटन सिंह, वो लुटन सिंह एक 15 साल पुराना विधायक है, जब इलेक्शन होता है तब लुटन सिंह का दर्शन होता है, तरह तरह के सवाल आते हैं और नेता लोगों का जो चरित्र है उस हिसाब से लुटन सिंह अपना तरीके से आपको जवाब देकर निकल जाते हैं।
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो की अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका का रेखांकित करता है। 23 जुलाई 1927 को ही भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, जो बाद में 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा और फिर अखिल भारतीय रेडियो बना। एक रिपोर्ट।
2: 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुँच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,39,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के खेलगांव में आज से 25 जुलाई तक द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस अंडर 12 प्रतियोगिता में सभी 24 जिलों के 576 सरकारी स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सुरेंग ने बताया कि जूनियर स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए खिलाड़ियों के रहने, भोजन और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया के तहत रांची, धनबाद, देवघर और गिरिडीह में सेपक टकरा अस्मिता लीग का आयोजन किया जाएगा। इसका पहला चरण 26 जुलाई को रांची और धनबाद में, जबकि दूसरा चरण 2 अगस्त को देवघर और गिरिडीह में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, पेपर लीक में शामिल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए देश में बनाए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। सिक्किम टनल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में BCCL के कोल नीर प्रोजेक्ट का किया ऑनलाइन उद्घाटन, मिलेगा शुद्ध पेयजल। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी विमानन पाठ्यक्रमों की सौगात, रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला AME और एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर। और रांची के खेलगांव में आज से द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, सभी 24 जिलों के 576 स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: वर्ष 1956 में
3: जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे, या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा, आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुनजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुनजा जी हाँ, वो है सुनजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से अच्छा जो लगा रहता था FM ब्लूटूथ तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें, शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारो फूल बरसा मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूँ। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूँ रेडियो, मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वही एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया, या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया, अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने। याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ, ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे, आपने सुने होंगे जयमाला में जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा, आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं, उसके बाद वंदे मातरम का गाना आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है, ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका, क्या अंतर आया जीवन में, ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की है, रख दी है। आप लिखते हैं कि रेडियो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है जो आप कर भी देते हैं। और आपने संदेश लिखा भी है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना

जुट कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत ये है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूं, अधिकतर रात में ही फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया। फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने YouTube पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही, लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में उड़ान भरता था बताइएगा। कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद? हमें लगता है बहुत सुंदर गीत जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे, जिसने मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी, ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए, वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहां के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्द दो में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊं। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊंगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूंगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखें उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन

0: इन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आ।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो से रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी को डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे, आज का ये सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें अब इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार। त्रिवेणी में आज उन तीन शब्दों की बातें जिन्हें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये तीन शब्द काफी बोले और सुने जाते हैं। ये शब्द बातचीत के शिष्टाचार है। इन्हें बातचीत में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि आत्मीयता और मेल मिलाप रहे, वातावरण अच्छा रहे। इन शब्दों के साथ ना उम्र की सीमा है ना स्टेटस का बंधन। काम करवाने के लिए बड़े छोटों से या बॉस अपने सबॉर्डिनेट से प्लीज कह दे तो काम और अच्छी तरह हो सकता है। प्लीज अनुरोध है। इस अनुरोध में जिसे काम करना है उसे भी सम्मान मिल गया और काम भी खुशी खुशी हो गया। इसी तरह सॉरी शब्द भी आयु, पद और वर्ग का भेदभाव नहीं करता। बस ये ख्याल रखना है कि सॉरी बोलना या माफ करे ये कहना सिर्फ बोला नहीं।

गया बल्कि उसे महसूस भी किया गया। मसलन गुस्से में किसी को भला बुरा कहने के बाद या देर से पहुंचने पर अगर माफी मांगी गई है तो फिर दोबारा वैसी ही परिस्थितियां ना बने। गलती दोहराने का मतलब है कि पहले मांगी गई माफी निरर्थक है। सॉरी या माफ कीजिए जैसे शब्द सार्थक तभी होते हैं जब वाकई उन्हें दिल से महसूस किया जाए।

जब हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो किसी को शुक्रिया या थैंक्स कहते हैं। इस तरह आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है और आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए जिंदगी में जब भी किसी को शुक्रिया कहने का मौका आए तो फौरन एक मीठा सा थैंक यू बोले, लेकिन दिल से, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक हेल्प तक ही थैंक यू को सीमित ना करें। यानी भौतिक काम या किसी चीज को देने पर ही थैंक यू कहना जरूरी नहीं। आत्मबल बढ़ाने वालों, सपनों को नई दिशा देने वालों, अपने बेगाने जो भी आपके काम आए, उन्हें शुक्रिया अदा करें।

जिंदगी के डिक्शनरी में प्लीज, थैंक यू और सॉरी का बहुत महत्व है। ये शब्द आभार प्रकट करने या खुद पर काम करने के मौके देते हैं। इन्हें बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि खुद का सम्मान और हिम्मत बढ़ती है। दूसरों को महत्व देने और खुद की जिम्मेदारी लेने की नीयत से बनाए गए ये शब्द सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के हर पल के लिए कृतज्ञता हो और गलतियां सुधारने की कोशिश होती रहे, तो कितनी खूबसूरत बन जाएगी ये जिंदगी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे यह ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
5: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल

0: खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अवरकोर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म का नाम था आज और कल।
1: बुला रहे हैं तुम्हें।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट और मोबाइल ऐप यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।
1: यही

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीडर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार पेपर लीक से जुड़े मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। श्री मेघवाल ने बताया कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और इन्हें कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए कड़े कानून हैं।
1: युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी। प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस जो संबंधित हैं उनको तो कहा ही जाएगा, अगर उनको लगता है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो राज्य सरकार को, जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बोला जाएगा और जल्दी से जल्दी ये कोर्ट स्थापित होंगे और युवाओं को न्याय मिलेगा, यही इनका उसका उद्देश्य।
0: जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जहां बयानबाजी तेज है वहीं घेराव की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। कल जहां भाजपा ने रांची में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था वहीं आज कांग्रेस इसी राह पर नजर आई, पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। सामूहिक प्रयास से एन्यूमरेशन प्रपत्र भरने और उनके डिजिटाइजेशन के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं का प्रपत्र डिजिटाइजेशन हो गया है उनके नाम अब सीधे 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में सुनिश्चित हो गए हैं। श्री कुमार ने राज्य के सभी विभागों और संस्थानों के लिए एसआईआर के मद्देनजर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। श्री कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ एईआरओ द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को संबंधित विभाग या संस्थान प्राप्त होने की तिथि को ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर अपनी रिपोर्ट वापस भेजेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज कोडरमा जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवलशाही थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमों ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उससे जुड़े संभावित अवैध कारोबार की जांच के तहत छापेमारी की है। वहीं एनआईए की एक टीम नवादा फुलवरिया के निकट एक व्यवसायी के विस्फोटक भंडारण केंद्र पहुंचकर भी जांच कर रही है। धनबाद में आज जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सहियाओं से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की।
1: नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ी है, इलाज का शोध बढ़ा है और इनकी मेहनत से ही पेशेंट हमारे सरकारी अस्पतालों में आना शुरू हुए। कृष्ण प्रदर्शन करने वाली सैयाओं को सैया किट के साथ सम्मानित किया। अभी हम लोग एचबीएनसी किट देंगे, बच्चों के लिए किट होगा जिसमें बच्चों के ग्रोथ को मॉनिटर किया जाएगा।
0: रांची में 26 जुलाई से डोरेंट कप टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने काउंटरों के जरिए निःशुल्क टिकट वितरित किए जा रहे हैं। पहले दिन 12,000 टिकट बांटे गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो के अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आज ही के दिन 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।

0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
0: जी,
1: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है,
0: जी,
1: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
0: क्या बात है।
1: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
1: बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी।
0: जी,
1: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
0: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं की शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधीर श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है, डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
1: जी हाँ।
0: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
0: जी,
1: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इन्फॉर्मेशन और न्यूज जाती है
0: जी,
1: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती हमारा चैनल है,
0: जी जी,
1: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है।
0: जी,
1: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है।
0: जी,
1: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है।
0: जी,
1: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है।
0: जी,
1: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही है। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे

0: साथी बन जाता है। विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया, तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर एक गाना बनता है। बताइए कौन सा गाना सुना है?
1: बिल्कुल
0: जिंदगी प्यार का गीत है।
1: बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी।
0: सुनते हैं
1: जरूर से, प्ले करिए
0: सौतन फिल्म का ये गाना।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक है आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर एफएम आया, फिर एसएमएस का जमाना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव एफएम तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज एफएम इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि

0: रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव भी चलते थे। और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या बीबीसी रेडियो उस समय जो चलते थे शॉर्ट वेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है
1: जी।
0: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया एफएम, और एफएम ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया
1: जी।
0: और एफएम में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए एफएम उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो एफएम के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं
1: जी।
0: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली एफएम ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए एफएम ट्रांसमीटर को लगाना होता है
1: जी। जी,
0: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं
1: जी। जी,
0: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए, और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं
1: जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है, और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं, और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा हैं मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है, और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा कर रही हैं अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बड़ोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूं कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला, और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही, और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी, धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
0: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी, और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं, और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है, और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। और स्पेशली साइंस और मैथ

0: जैसे सब्जेक्ट्स का काफी मुझे इंटरेस्ट था. तो जब टेंथ के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, टेंथ के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर. तो साइंस, मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया. और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़ा ऐसे चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं मैथ्स में, चल पाएगी कि नहीं. तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक एक जैसे बोलते हैं कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
1: चुनौती के रूप में लिया,
0: चुनौती के रूप में. और फिर मैंने 11 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए. तो मैंने फिर याद है मुझे 11 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहां पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर अलग अलग साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके. और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी
1: जी, बिल्कुल.
0: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया और
1: क्या बात है,
0: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला. तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी. और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट
1: जी.
0: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया. और फिर जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन करवाया गया. हाँ, एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
1: शहर से बाहर नहीं जाना
0: झिझक रहती थी
1: जी जी.
0: तो वो एक चैलेंज था. तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से. तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन. और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी और
1: अच्छा.
0: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
1: था. क्या
0: उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे. तो घर पे थोड़ा मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी.
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी. तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है. तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को.
0: नहीं जी, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा. हाँ
1: जी जी. तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती थी.
0: बिल्कुल.
1: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहां पहुंच सकते हैं. और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं. तो अब यहां पर एक गाना आना चाहिए.
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाए.
0: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी.
1: जी बिल्कुल.

0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ मीनाक्षी जी। हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये ना करो वो ना करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूंगी। और कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह
0: जी जी,
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि

0: जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया था, बॉयज के लिए था. तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा. इस तरह की चीजें. क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहां पे ये सारी चीजें हम सीखते थे. तो जब मैंने फिर पता किया डांस कंपटीशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड.
1: जी.
0: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप पार्टिसिपेट कर लीजिए और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए. तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ. और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा, वही मेरी पसंद का गाना था उस समय. और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 days थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की. और फिर कॉम्पिटिशन वाला दिन आया और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहां पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी. और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में.
1: क्या बात है.
0: 16 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बसती है.
1: क्या बात है.
0: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं.
1: जी.
0: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का.
1: बिल्कुल सही बात है. और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है. अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती. और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है. यहाँ पर मीनाक्षी जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आते और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी है.

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्क

0: स्टूडेंट रही हूँ, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को। पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी, या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था, और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलाते।
0: आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था
0: जी।
1: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था, और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम एक घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है, उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम
0: जी जी,
1: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है, और काफी टफ एग्जाम होता है
0: जी।
1: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास वन ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
0: जी।
1: तो उसका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
0: जी,
1: और ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज से निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई, और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई, तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज
0: जी,
1: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया, क्योंकि काफी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था, और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं
0: जी,
1: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी, और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, और आज मुंबई
0: जी,
1: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए। और काफी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ
0: जी। बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं, और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे, तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई न कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा, तो जो भी बोले तथ्यपरक बोले। और देखिए हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है, और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति, और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका, जन जन को जोड़ने वाले, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ

0: श्रोताओं ने रेडियो के चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूं और एक शिक्षक हूं और सखी सहेली सुन रहा हूं, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूं। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर वीबीएस अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले।
1: हाँ, श्योर श्योर।
0: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का?
1: हाँ हाँ, बहुत अच्छा।
0: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था, सुनते हैं यही गाना।
1: जी जी।

0: क्योंकि आप एक ही पल चुनने को बोल रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो 27 इयर्स के इस करियर में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए या ऐसी परिस्थितियां बनी कि कठिन समय में भी हम लोगों ने तकनीकी रूप से ब्रॉडकास्टिंग जारी रखा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, तो मैं एक चीज थोड़ा सा बताऊंगी, हमारे श्रोता लोग भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जैसे कि जानते हैं पहले LPs होते थे, फिर मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो 2002 की बात है जब मैं जयपुर में कार्यरत थी, और उस समय नए नए कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग का आरंभ हुआ था
1: जी।
0: और उसी समय एक ये प्रक्रिया भी शुरू हुई थी कि जो भी हमारी आर्काइव वैल्यू का जो कंटेंट है, क्योंकि आकाशवाणी का तो इतिहास बहुत पुराना है और हमारे पास कई महानुभावों की महान ऑडियो बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उस समय उसको डिजिटाइज करने का भी एक दौर शुरू हुआ था। तो उसमें ये था कि चूंकि अब कंप्यूटर आ गया है तो सब कुछ उसके थ्रू फास्ट और अच्छा होने लगा था
1: जी।
0: और जो पुराने LPs थे और जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको भी हम रियल टाइम में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस शुरू किया था। तो उस समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं मीडिया को, जब टेप या उसके अंदर स्टोर रहता है, तो कुछ थोड़ी सी उसमें नॉइज वगैरह डेवलप हो जाती है। तो उस समय हम लोगों ने एक कोशिश की कि जो भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, जो ला रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स को, तो उसमें जो भी उसका नॉइज कम्पोनेंट है उसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम, एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम उसको अच्छा बना दें ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनाई सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है
1: जी।
0: और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं, तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है
1: जी
0: वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है। तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी।
1: जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा। और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हो।
0: नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार, और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है। और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है
1: जी,
0: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है
1: जी,
0: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे
1: जी।
0: तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी मेरी ओर से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें, घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे, अपने आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट। आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा
1: जी।
0: उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करे। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं।
1: जी जी।
0: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट।
1: बिल्कुल,
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज द की।
1: जी, सही कह रही हैं आप। और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं। और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
0: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
1: जी,
0: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी, क्योंकि
1: क्या बात है,
0: अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मैं, मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम। तो वो माहौल वैसा ही है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर से तो मैं ये जा ही रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th-12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग।
1: क्या बात है।
0: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके, कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ न कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ जिससे आप सीखें, दूसरे सीखें। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
1: जी जी।
0: बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ।
1: जी जी।
0: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं।
1: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
0: क्या
1: है भाई, आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहां पर गाना है ये

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दें, उसे ज़रूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है
0: जी।
1: परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं
0: जी।
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए।
0: क्या बात है।
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का बैलेंस बनाए रखें। हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी, मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजस्वी।
2: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीआईडी की टीम पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंची और जेपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज कोडरमा जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवलशाही थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमों ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उससे जुड़े संभावित अवैध कारोबार की जांच के तहत छापेमारी की। वहीं एनआईए की एक टीम नवादा फुलवरिया के निकट एक व्यवसायी के विस्फोटक भंडारण केंद्र पहुंचकर भी जांच कर रही है। रांची में 26 जुलाई से डोरंड कप टूर्नामेंट मैच खेले जाने हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने काउंटरों के जरिए निःशुल्क टिकट वितरित किए गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 27 जुलाई तक आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
4: सर। नमस्कार।
3: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
4: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
3: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
4: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
3: तो ये खानदानी काम है?
4: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
3: ये तो मुझे पता है कि जो छेपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट है हिंदुस्तान में, है ना?
4: जी सर।
3: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
4: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
3: जी।
4: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छेपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
3: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
4: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
3: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
4: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
3: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
4: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
3: अच्छा अच्छा।
4: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मोती जिनको बोलते हैं।
3: जी जी।
4: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मोती।
3: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
4: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
3: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, ईजाद किया, क्या मामला है?
4: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
3: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
4: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा।
3: अच्छा।
4: मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
3: किस तरह से, ये भी बताइए
4: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर,
3: जो
4: ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
3: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
3: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बहापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बहापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नट्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया।
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई, लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ, आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी, और सर ये मीठी मीठी आवाज ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहाँ रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहाँ पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ मेरे को, ये लगा कि एक दिन पहले जानना था मेरे को आकाशवाणी।
0: जी मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार।
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर, मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर, पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है
0: जी।
1: तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, याद से आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर, आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं
0: जी, जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे मैं विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल,
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जिसको लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
0: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी भोपाल के क्या हालचाल है?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा हुआ।
1: और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:30 होने को है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजी जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं।

0: या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं।
0: जी,
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है।
0: जी,
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को, पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
3: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
7: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
8: जी महाराज।
7: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
3: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
7: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
3: अच्छा।

0: ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
1: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटें, पेड़ को ना काटें महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
0: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
2: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
3: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे पीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
4: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
3: राजा वेश बदल कर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
5: आज मैं राजा बनूंगी।
6: आज मैं राजा बनूंगा।
7: आज तो मैं राजा बनूंगा।
8: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
0: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
5: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
9: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
5: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
9: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
6: हमने तो देखा है।
10: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
5: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
9: महाराज की जय हो। जय हो। जय हो।
3: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
11: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
12: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
3: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
13: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
12: चोरी?
3: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
12: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
13: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटा

0: दूंगी।
1: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने चौथे दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरू, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
3: झूठ?
1: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
2: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
3: चोट? वो
1: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि चौथी मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरू, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
1: राजा को क्रोध आ गया।
4: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
6: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
7: क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी, अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
8: अरे मशकू भाई,
9: जी जनाब,
8: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
9: लीजिए जनाब।
8: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो
9: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
8: रखो रखो।
9: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
8: गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो।
9: शुक्रिया
8: शुक्रिया।
7: अमृत वाला आ गया।
10: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी।

0: मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूत की तरफ देखा। मशकूत दिल ही दिल में खुश हुआ।
1: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
2: मशकूत भाई।
3: जी जनाब।
2: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
3: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह भी खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
2: लाओ। बस बस,
3: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
2: सही कहा मशकूक भाई।
3: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
2: अभी तक तो कुछ नहीं।
3: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहे इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
2: अरे नहीं नहीं
3: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
2: भाई
3: जी,
2: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
3: क्या बात करते हैं,
2: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
3: इसमें नेकी की क्या बात है?
2: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: ये तो मेरा फर्ज था।
2: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
3: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
2: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
3: अच्छा,
2: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
3: ये तो बड़ा नेक काम है।
2: अब ये लीजिए।
3: ये किताब, ये किताब किस लिए?
2: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
3: अच्छा,
2: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
3: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
2: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
3: तौबा तौबा तौबा,
2: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
3: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताऊ और आपका एहसान मंद रहूंगा।
1: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
4: जनाब,
5: लाजवाब इंसान है वो।
1: क्या बात करता
5: है, क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
0: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जो जो मशकूत की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
6: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
0: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
6: पैसा लाए हो?
7: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
8: है खाली, आप चले आते हो।
7: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
8: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
7: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
8: बच्चे को गोद में उठाओ।
7: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
8: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
7: मर जाएगा ये।
0: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई।

0: अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
1: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई जी, मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या, क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताऊर आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या गिरा?

0: 아무리도 안 하게야. 야후 그런 거죠 막.
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा समिट का आज समापन हो गया। समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीआईडी की टीम पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंची और जेपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच और नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक भंडारण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इसके तार कोडरमा से जुड़े मिलने के बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के अलका बहन दने से जोहार प्रणाम, और साथ ही हाथी प्रशांत भाई तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: प्रणाम प्रणाम अलका बहन, और कार्यक्रम सुननार सब किसान भाई बहन के हमारे दिने से जोहार, और सब गोटे कार्यक्रम में स्वागत है।
0: तो देखा हमने कार्यक्रम में हाजिर हो चुका लिया किसान भाई बहन से बात करे ले। और अभी के समय का वो प्रशांत भाई की अभी जैसे पानी अब पड़े लग रही है, कुछ दिन पहले तो ऐसा लग लो कि पानी एकदम ना है, कैसे खेती बाड़ी हो तो का होता है, इस सब चीज की चिंता हो गई।
1: चिंता हले भाई, लेकिन अब धर जो पनिया होले दो चार दिन तो बहुत बढ़िया।

0: ऐसे सबके हरियर हो गए अभी अभी देखबा कि सब ऐसे किसान भाई में हर बार लेकर के अपन खेत मोरी के तैयारी में हथी भाई। अब धर ऐसे बिचड़ा भी बहुत जगह तैयार है, खेत बाड़ी जब जोते लायक हो गए थे सब तुरते एकदम ओकरा जोत कोड़ करके डोड़ा के सब ऐसे खेत बाड़ी ऐसे लगवे के तैयारी में जुट गए।
1: बिल्कुल, यानी खेत में हमने के पानी जम गए हो और एकदम देखबा के छोटा ट्रैक्टर लेके कोई हल बैल लेके सब हमने खेत पर ही मतलब ज्यादा अच्छा लगे तो कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और अभी के समय में क्या हो कि धान के तो समय है ही,
0: बिल्कुल
1: मकई भी कहीं लगे थो या लगल हो कोरन दियल जाए थो, राहर उड़ीद मूंग ये सब हमने कभी मतलब कहीं लगल हो कहीं बढ़वार के अवस्था में हो कहीं मतलब समय पर हो ये सब के हमने ध्यान देवे लगल हो
0: आदि हरदी सब
1: सब सब जे चीज लगल हो का ध्यान मतलब की कोरन दा पानी अब तो पड़ गेलो न पानी हेलो तो लगे लो कि पानी ओकर दिए पड़ते सिंचाई के जरूरत होते।
0: देखा कि बहुत जगह हमन के पहले भी देखल गेल हो अलका बहन की जब पानी ना पड़ो धान के भी पटा के खेती करल गेल हो, लेकिन अब धर के समय में है धान के पटा के खेती तू ना कर सका है, कहे कि समय गुजर जाए ते छीटा विधि से लास्ट में आवू है कि पहले तो है से हमन के रोपनी जो हुआ है धान रोपनी ना करके बिल्कुल छीटा विधि से हम इन धान के ऐसे बुआई करो ही है और सीधा बुआई के बाद है सीधा अपन जो पानी बूंदी पड़ लो जनम लो अपने ओकर में निकोनी गोनी जे करे खो कर ला और फिर ऐसे धान एक पैदावार एक बार में हो गलो। लेकिन जे हम इनके बिचड़ा करो ये धान के और जरा रोपनी करे के लगे वो ऐसे हम इनके ऐसे 20-25 दिन पहले ओकर बिचड़ा हम इन लगा हुआ ये मोरी तैयार करे खातिर ले और 20-25 दिन के बाद ऐसे मोरी तैयार हुआ है ओकर बाद ऐसे हम इनके खेत तैयारी करे के लगो है और जब कादो वो पूरा बढ़िया से हो जाए तब ऐसे रोपनी के ओकर में काम शुरू हुआ है। तो यह इंतजार में किसान भाई बहन बहुत जगह ऐसे अपन ऐसे मोरी ऐसे खेत में बुन करके तो तैयार कर ले थी, लेकिन चाटा पड़ल लो खेत में तो फिर खेत के जोताई कोड़ाई कादो कैसे हुए
1: तो सबसे ज्यादा जरूरी
0: हाँ तो अब धर जो पनिया पड़ लो तो तनी ऐसे एकदम पूरा गिल गिला गए मटिया एकदम बढ़िया से पानी भी ठहर गए खेत में तो अब धर ऐसे जे खेत गहरा है वो खेत में ऐसे खेत की तैयारी चले थो रोपनी डोपनी के काम ओकर में शुरू हो रहा लो। लेकिन जे खेत ऊपर वाला है दो नंबर खेत ओकर में ऐसे अब धर ऐसे नाले सको या उतना पानी भी
1: नहीं पड़ ले अभी तो काम चलाओ कुछ कुछ मतलब कि जे एकदम नाय पे कुछ पड़ ले
0: हाँ यह चीज है। और दूसर बात हो गलो भाई कि अबधर के समय में हम इनके बरसात के जितना भी तरह के सब्जी लगे ले ही ओकर देखभाल करे के लगे देखवा के बहुत सब में उसे कीड़ा मकोड़ा लग रहा लो रोग भी आधी लग रहा लो खास करके कीटनाशक देखवा कि जो कीट सब हो थी पत्ती लपेटक तना छेदा की सब जो है वो सब ज्यादा परेशान करो थी बरसात के मौसम में तो ओकरा है से दवाई बीरो जो लगो है ओकर में तो दवाई छिट करके किसान भाई बहन ऐसे अपन निजात पे थी। दवाई के कहमन की ज्यादा से ज्यादा हार्ड दवाई के प्रयोग न करे कि नीम के जो तेल है या नीम के जो कीटनाशक है ओकर से ज्यादा बढ़िया दूसर रासायनिक कीटनाशक न हो है। अगर ई सब देखे बरसात में हुए कि बहुत ज्यादा कीट हमला न करो है। हमला करो है कीट जखनी है से रबी के टाइम हो है उसमें ज्यादा हमला करो है कीट बरसात के समय में बहुत ज्यादा है इतने बढ़िया बढ़वार हो है ना इतना मजबूती के साथ पौधा तैयार हो है कि कीट ओकर पे हमला भी करो है थोड़ा बहुत तो पौधा ऐसे निकल जाए।
1: बिल्कुल तो हमने के बस इस सब चीज के ध्यान रखना है कि का जे हल्का भी जो बीमारी है ओकर सही हमने समुचित इलाज करिए और अगर हमने जिस उर्वरक के साथ जैविक खाद के भी उपयोग करिए और एकरा सही मात्रा में उपयोग करिए। और सबसे बड़ी बात कि आजकल मौसम के पूर्वानुमान कब 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले बता दिया जाए कि अब के कुछ दिन बाद ऐसा ऐसा मौसम रहतो ओकर अनुसार हमने की खेती बाड़ी के कोई भी योजना बनाइए या चाहिए कि हमने के का करना है ओकर अनुसार करिए।
0: बिल्कुल भाई मौसम के ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो। अब धर के समय में देख रहा है कि मौसम के मिजाज ऐसे कभी भी ऐसे करवट ले ले है अचानक देखवा कि एकदम रौद होकर और फिर देखवा कि आधे घंटे के बाद कचकचा के पानी मारो लगलो और उसके बाद ऐसे एकदम कड़कड़ा के एकदम बिजली कड़को लगलो चमको लगलो तो एकदम इतना डर भय लगो है ना कि अगर सुनसान जगह तू रहबा बिजली कड़के लगर चालू भेलो टाण और बोन में रहबा और बिजली कड़के चालू हुए तो एकदम जिया डरा लगो है
1: बिल्कुल सही कहला। और अभी जे भी काम हमने के रहे तो खेत पथार के खेत के ही काम रहतो। तो इस तरीका के पानी और जे बिजली गिरे के समस्या है, एक में हमीन के अपन चेत के काम करे के है कि अगर जो है बहुत ज्यादा बिजली गरजत है तो कोशिश करना चाहिए कि हम खेत में भी ना रहिए और अपन सुरक्षित जगह में
0: आ रहे ओकर नीचे हमीन लुका सको हुई है
1: और बड़ा गाछ के नीचे तो एकदम नहीं,
0: बिल्कुल
1: नहीं। और एक चीज और भी अभी डर रहो है सांप बिच्छू, तो एकर भी हमने खेत बारी में जब भी जाइए तो अपन चेत के संभाल के वहाँ पर जाइए ताकि हमने के किसी तरीका के नुकसान ना हुए।
0: एकदम भाई देखा कि बाप रे बाप, घास पधार से एकदम पूरा एकदम खेत भरल रहो, वैसने में खाली पर एक किसान भाई बहन कूदो लगो थी, तो एकर से ये हो है कि का अखरी पिपरी है नजर से तो गवाए न, मगर है वैसने में है से नुकसानी हो जाए। तो तनी ये कहबन की भाई की अबधर के समय में तनी जूता उता है से बढ़िया से पींद करके खेत बारी में जेथी, ताकि देखा कि आजकल ऐसे ही तक ले जुतवा वो है।
1: आजकल तो अच्छा जूता आवे है जे कैसे काफी सुरक्षित रहो,
0: काफी ऊंचा तक ले जुतवा वो है, तो उसका वाला पिन के अगर हम जाइए खेत में और खेत में जाए के बाद तो खेत तो साफ सुथरा रहो है हुमा तक, तब जे झाड़ झुखाड़ वाला जगह पार हुई है तो कम से कम वो वाला जुतवा ऐसे पिन के पार हुई है ताकि हम इनके सुरक्षा मिलित रहे। लेकिन अगर हमने आखिरी पिपरी के दरकिनार करके ओकर नजरअंदाज करके अगर चलो लगभग अगर खाली गोड़े तो असल में ऐसे परेशानी बढ़ जाए, तो ये जरको ऐसे ये सब ध्यान से चुकती ना किसान भाई बहन, बड़ी सावधानी से काम करती।
1: बिल्कुल। और अब हमने रुके ही सुने एगो जरूरी संदेश, फिर आगे हमने एक बातचीत में शामिल रह।
0: बिल्कुल।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: जरूरी संदेश के बाद फिर अब धर्म किसान भाई बहन के संगे बतियाइए। और देखा गया किसान भाई बहन अबधर के समय में बहुत सा किसान भाई बहन ऐसे गन्ना जे लगेले थे और जे लगबे भी है मन करो हन के देखा कि थोड़ा पिछुआ भी जाती गन्ना लगे के समय, तो तुहरा है से मार्च अप्रैल रहो है और वही समय है से लगो है, बहुत सा किसान भाई बहन पाछे भी लगा हुआ थी। लेकिन गन्ना के अब ध्यान देवे वाला बात रह गए कि भाई ओकर में जब पानी गूंदी हो रहा हो ओकर में तनी सावधानी बरते के लगे, काहे कि गन्ना के खेती है से लगेले होती पूरा एकदम पात के नीचे, तो नीचवा में ओकरा है से माटी चढ़ा के ओकरा अब है से किनारे पानी निकले के
1: जगह देवे के चाहिए कि पानी जल जमाव ना हो,
0: जैसे कि माटी चढ़ा करके ओकरा दलथु कतारी के ठीक कर जर तर रोक दल बढ़िया कर दलथु, ओकर बाद बगल बगल से नली निकल गेलो।
1: हाँ।
0: नली हुए सिंचाई करे भी काम आ जाए और पानी निकासी भी काम आ जाए, तो ये व्यवस्था जरूर किसान भाई बहन करती कहे कि अगर पानी ओकर में जल जमा हो जाता तो फिर सड़ल गलर के समस्या उत्पन्न होवे लगते, तो जल वहां पर जमा हुए के न देवे के चाहिए। और अपन खेत में है से एक बार जरूर जा करके देखती कि हमें के कहीं खेत में पानी उनी तो जमा नहीं हो रहा है या फिर मट्टी के कटाव तो ना हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये सब चीज के बहुत ध्यान रखती।
1: बिल्कुल। और ओकर बाद जे कोई चाहो थे कि हम केतारी के खेती करिए बाद में, यानी जखनी समय रहे कि अभी समय ना है, चाहे जब समय है कि हमें अब केतारी के खेती कुछ जमीन पे लगाना है, तो बहुत सारी बात के है जे अभी से हमने के ध्यान रख लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि अगर तू ध्यान रखबा तो जब भी तू फसल लगेबा जब भी तू खेती करे ले चाहबा तो ओकर में तोरा तो किसी तरीका के कोई दिक्कत ना हो। तो
0: हाँ, तो सबसे पहला चीज है कि भाई पोहड़ा जब किसान भाई बहन हासिल करो थी तो बढ़िया पोहड़ा लेवे चाहिए, एकर से कम 4-5 आंख होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और वो आंख रहो तो हुमे से कतारी के जर्मेशन हुए है,
1: सही
0: तो वो आंख वाला बढ़िया होवे चाहिए, पुष्ट होवे चाहिए जो पोहड़ होवे से, तो ओकर बाद है कि वो जो पोहड़वा के बढ़िया से तो है से कार्बेंडा जीव में ओकरा से उपचारित करला और उपचारित करके ठंडा छायादार जगह पर सुखावे के बाद है से वो पौधा है से लगवे चाहिए, और लगवे घड़ी है से माटी है से फुलुक फुलुक देवे चाहिए, और ओकर में है से थोड़ा हल्का जो खाद भी ओकर में जैविक खाद या फिर एकदम गोबर जो एकदम पुरान गोबर एकदम रहलो सड़ल करिया तू हल्का फुल्का ओकर में देते जितू पात में और वो माटी है दोनों दोनों से भर ले चल जितू, तो वैसन भी कर सकती ओकर में है से बालू भी दे सकती, ओकर से हो कि मट्टी भी फल उगरो है और बहुत जल्दी है जर्मिशन भी आवो है ओकर में।
1: बिल्कुल, और ओकर बोवाई से पहले कोशिश करे के चाहिए कि अगर हमने के जो बीज है ओकर अगर हमने जैविक उपचार भी कर लिए या फफूंदी नाशी के जैविक उपचार कर लिए तो हमने के सही हो जाते
0: बिल्कुल,
1: किसी तरीका के बीज में कोई बीमारी होवे के डर नहीं रहते। और ओकर बाद सबसे ज्यादा जरूरी रहे कि अपन क्षेत्र के अनुसार यानी जहां हमारे जगह में जमीन लगावे थी उस जगह के अनुसार हमने समय पर बुवाई
0: करिए
1: समय के अनुसार। और पौधा से पौधा के दूरी एक सही दूरी रखिए कि बड़ा होल बाद भी ओकर में जगह रहे और कतार के भी सही दूरी रखिए।
0: बिल्कुल, तो ई चीज के है से किसान भाई बहन ध्यान जरूर रखती कि भाई कतार में लगवे से ही हो है कि खेत में चले में भी आसानी हो है। और अगर कतारी जब बढ़ जाए तो ओकर किनारे किनारे बीच बीच में जगह जो बचो है ओकर में दूसर भी सब्जी के हम खेती कर सकलिए। तो किसान भाई बहन इस चीज की जरूर ध्यान रखती कि एक फसल में दूसरा भी लाभ ले सको थी।
1: बिल्कुल, और हमने के जो केतारी लगे लही है प्रशांत भाई ओका शुरू से ही हमने के फसल के देखते रहवे के चाहिए।
0: बिल्कुल, तब हम इनके बातचीत के अभी हमने अपने रोक लही है और सुनो ही है किसान भाई बहन की एक भेंट वार्ता। और देखा कि अबधर के मौसम में ऐसे बकरी सब के बहुत तरह के बीमारी हुआ है, पीपीआर हो जा है, कभी देखो डायरिया की शिकायत हो जा है, कोई छगरी बढ़बे न करतो, कोई अगर मोटेबुन करतो, तो इ तरह के बहुत तरह के परेशानी ओकर में आवो है। तो वो परेशानी से कैसे बचाव करल जाए, कैसे छागर पटरू के बढ़िया से पोसल जाए,
1: पोसन दियल जाए,
0: हाँ, ताकि है से हम इनके है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हुए।
1: बिल्कुल सही,
0: डॉक्टर हथी डॉक्टर अर्जुन प्रसाद जे समस्या के समाधान बता रहे थी बकरी पालन में जो समस्या हुआ है ओकर बारे में, और उनखर से बातचीत कर ले थी अलका कुमारी।
1: तो सुनिए जानकारी भर बातचीत। नमस्कार किसान भाई बहन, समय समय पर हम आप सभी को ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपको कृषि कार्य और पशुपालन के लिए काफी लाभदायक होती है, समय के अनुसार होती है, जिसके अनुसार आप कृषि कार्य कर सके, पशुपालन कर सके, पशुओं की देखभाल कर सके। अभी मौसम है बारिश का तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी पशुओं को विशेष देखभाल की। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्जुन प्रसाद जो सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक हैं, जो बताएंगे कि बारिश के मौसम में बकरियों में क्या बीमारियां हो सकती हैं या क्या होने का डर रहता है, उनका बचाव कैसे कर सके। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: हाँ नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पर इतने दिनों तक कार्यरत रहे और कैसे कैसे क्या क्या किए हैं।
3: हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन प्रसाद है, हम प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी और भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी में झारखंड सरकार में लगभग 30 वर्ष तक सेवा दी है, अभी रिटायर कर गए हैं और आसपास के ही ब्लॉक से रिटायर किए हैं।
1: आप इधर ही और अभी भी आप पशु चिकित्सा
3: पशु चिकित्सा कार्य में लगे हुए हैं, जहां से भी कॉल आता है हम जाते हैं और पशु चिकित्सा कार्य में लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो सर सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं कि बकरियों के बारे में, कहे कि काफी लोग बकरी पालन करते हैं, कहा जाता है कि गरीबों का एटीएम भी है जिससे बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है और इसकी देखभाल में ज्यादा समस्या नहीं होती है, तो सबसे पहले बताइए कि बकरी की देखभाल में हमें किन किन बातों की जरूरत पड़ती
3: है। देखिये, अभी बरसात के समय है और अभी एक रोग चला हुआ है उसको पीपीआर कहते हैं, प्लीरो निमोनिया, तो ये वायरल डिजीज है और बकरी में होता है, बड़ा फैटल डिजीज है, इसमें बहुत से बकरी का मौत हो जाता है। इसलिए हम किसान भाइयों से चाहेंगे कि इसका वैक्सीन आता है पीपीआर वैक्सीन, वो सभी बकरी में पीपीआर वैक्सीन दिला दें और हम जहां तक कोशिश कर रहे हैं अपने क्षेत्र में पीपीआर वैक्सीन बकरियों में दे रहे हैं और इसके बचाव के लिए एंटीबायोटिक बाद में प्रयोग होता है, लेकिन पहले वैक्सीन दिला लें ताकि इसका जो डेथ है वो कम से कम हो बकरी में।
1: अच्छा सर, ये जो पीपीआर की जो बीमारी होती है ये बकरियों में, इसमें कुछ लक्षण होता है या पहचान?
3: हाँ, लक्षण है, उसमें बुखार आएगा, सर्दी, खांसी, किसी किसी में डायरिया होता है।
4: ये अभी बारिश के मौसम में?
3: हाँ, बारिश के मौसम में भी ज्यादा फैला हुआ है, अभी भी बहुत से गांव में फैला हुआ है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उसका सही ना तो ट्रीटमेंट करा पाते हैं और ना तो उसका वैक्सीनेशन करा पाते हैं। अगर सही अवस्था में वैक्सीनेशन करा दिया जाए तो ये बीमारी नहीं फैलता है।
4: तो शुरुआती अगर लक्षण क्या दिखता होगा?
3: शुरुआती लक्षण में खाना पीना बंद कर देगा बकरी, बुखार आ जाएगा, नाक से शीतल चलेगा और किसी किसी में डायरिया हो जाता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। ये वायरल बीमारी है,
4: वायरल चल रहा है।
3: हाँ,
4: तो इसकी जो मतलब अगर हमें वैक्सीन लगवाना होता है तो ये बारिश शुरू होने से पहले ही लगवाना होता है या कि अभी?
3: हाँ, अगर अच्छा रहे कि बरसात शुरू होने से पहले लगा दें, अगर जो नए किसान भाई लगाए हैं वो अभी भी लगा सकते हैं।

0: जिनके घर में अगर दो चार बकरी को ये बीमारी धर लिया तो उनके यहाँ फिर वैक्सीन नहीं काम करता है।
1: यानी अगर आपके घर में शुरुआत में ही लगा,
0: हाँ शुरुआत में लगा लीजिए तो एक भी बकरी को नहीं होगा। 6 महीना तक इसका गारंटी है कि ये बीमारी फिर नहीं होता है। लेकिन अगर घर में 2 बकरी भी धर लिया तो ये चूंकि कंटाजियस डिजीज है, धीरे धीरे सब में फैल जाता है।
1: अच्छा, संक्रमण वाली
0: बीमारी है। और उसके बाद वैक्सीन देने के बाद भी कुछ तो कंट्रोल होता है, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए पहले ही किसान भाइयों को चाहिए कि बकरी का PPR वैक्सीन दिला लें, बरसात होने से पहले या बरसात होने के शुरुआती स्टेज में दिला लें।
1: यानी कि शुरुआती स्टेज में अगर हम ध्यानपूर्वक अगर अपनी बकरियों को वैक्सीन दिलवा देते हैं तो ठीक रहता है। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को लापरवाही या फिर समय के अभाव या जानकारी के अभाव में अगर नहीं दे तो उसमें क्या किया जा सकता है?
0: हाँ, उसके लिए आता है सुई। आपको एंटीवायरल तो नहीं कुछ है, लेकिन एंटी बैक्टीरियल है। वायरस 2 से 3 दिन इफेक्ट करता है, फिर सेकेंडरी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी जानवर में। वायरस 2 से 3 दिन शरीर में रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में ये होता है। इसमें जो PPR है उसको वैक्सीन समय पर बकरियों को दिला लेना चाहिए, भेड़ बकरियों को। और बाद में अगर इन्फेक्शन फैल जाता है तो हायर एंटीबायोटिक का सुई पड़ता है, बुखार का सुई पड़ता है और विटामिन का सुई पड़ता है। इसलिए कि बकरी बड़ी तेजी से कमजोर हो जाती है।
1: अच्छा।
0: और फिर उसमें बाद में चूंकि ये वायरल डिजीज है, कोई बैक्टीरियल नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो 2-3 दिन तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वैक्सीन का, एंटीबायोटिक का। लेकिन बाद में बैक्टीरियल है वो काम कर जाता है। तो हम लोग हायर एंटीबायोटिक देते हैं और बुखार का दवा देते हैं और विटामिन का दवा देते हैं, इससे 90% बकरी बच जाती है।
1: बिल्कुल। यानी कि अगर बीमारी आपको नजर आ रही है अपने बकरियों में तो उसे पशु चिकित्सक से जरूर दिखा लेना।
0: हाँ, जरूर दिखा रहे
1: कि लापरवाही ना करें
0: और समय से पहले वैक्सीन सब दिलवा लें, ताकि फिर ये फैटल डिजीज है और इसमें बहुत से बकरी का हानि हो जाता है।
1: तो मतलब इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: हाँ जी।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी के मौसम में जैसे आपने तो बताया कि जो बीमारी PPR है उसमें हमें किस खास ख्याल रखना चाहिए, वैक्सीन डलवाना चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी का जो मौसम है, हम देखते हैं अधिकतर बकरियों को चराने के लिए लोग बाहर ले जाते हैं, तो अभी बहुत तरीका का अलग अलग तरीका का घास रहता है जो खा लेते, क्या बकरियों को इनसे कुछ प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ, प्रभाव पड़ता है आपको। खास करके बहुत से पैरासाइटिक डिजीज है जो बरसात में घास के ऊपर उसका एग्स आ जाता है।
1: अच्छा।
0: अंडा। और वो बकरी खा लेती है घास के साथ, बाद में पैरासाइटिक डिजीज, खास करके जो लीवर फ्लूक होता है जिसमें बकरी को डायरिया होता है और कमजोर हो जाती है, तो वो डिजीज से बचने के लिए है कि आपको एंटी प्रोटोजोअल डिजीज आता है, पिलाने वाला दवा आता है, उसको जरूर पिलावे किसान भाई, ताकि वो जो डिजीज ट्रांसफर होता है घास से आदमी जानवर में, वो डिजीज फैले नहीं। उसके लिए जरूरी है कि एंटी प्रोटोजोअल डिजीज आप दवा उसको सब बकरी को और भेड़ को पिला देना चाहिए।
1: मतलब घास वास खाने से पहले या फिर अभी के मौसम?
0: हाँ, घास खाने के बाद भी उसको पिला सकते हैं।
1: मतलब डर उसमें कुछ पहचान होता है कि जैसे उस घास खा ली है तो उसका कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहा है?
0: हाँ, देखिए 2-3 तरह का बीमारी होता है। एक बीमारी तो होता है कि बहुत से घास पॉइजनस टाइप का होता है, तो वो घास खा लेगा तो थोड़ा से पागल जैसा बकरी करेगी, चारों पट्टी घूमेगी, घूमना शुरू करेगी, गिर जाएगी। तो ये एक तरह का पॉइजनस घास है जो कि बहुत जगह से उगता है और खासकर बरसातें में उगता है, सब जगह हर समय नहीं उगता है। तो उसको खाने के बाद में वो जानवर अजीब तरह का विचित्र बिहेवियर करेगा, बकरी लोग, गाय भैंस में भी होता है। और उसका फिर वही डिजीज है कि उसका उपचार कराना जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये भी पशु चिकित्सक से परामर्श
0: ना, घरेलू इलाज से नहीं होगा, पशु चिकित्सक ही उसका इलाज कर सकते हैं।
1: क्योंकि इस मौसम में जरूरत होता है कि घास में बहुत तरीके के बीमारी,
0: बहुत तरह के बैक्टीरिया है, बहुत तरह का प्रोटोजोआ है जो कि घास के पत्ते पर चढ़ जाते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और उसको जानवर खाता है, पेट में जाने के बाद उसका जो प्रभाव शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लीजिए कौन से प्रोटोजुआ है, कौन से बैक्टीरिया है, उसके अनुसार

0: उनका इलाज करेंगे,
1: ये जरूरी होता है। अच्छा, तो अभी एक और भी सवाल उठ रहा है कि जैसे पशु को तो बकरियों के बारे में हम लोगों ने इतना समझा, तो अगर जो नवजात बकरी का बच्चा होगा अभी के मौसम में आएगा तो हमें उसे उसके लिए क्या क्या ख्याल रखना होगा?
0: देखिए, एक महीना बकरी का बच्चा हो जाए तो ये वो जोक का दबाव जिसको प्रोटो अथी कहते हैं उसको जरूर देना चाहिए। पिपराजीन आता है या बहुत प्रकार के आता है, ये सिरप आता है, टैबलेट आता है जो कि पेट में जो कृमि है उसको नाश कर सके, और एक महीना के बाद ही देना चाहिए, एक महीना पहले नहीं। जब घास खाना शुरू करेगा बकरी बच्चा तब ही होगा उसको कृमि,
1: मतलब
0: उसके पहले नहीं होता है। तो उसके लिए कृमिनाशक दवा बहुत प्रकार का आता है, मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट भी है और सिरप भी है, तो वो जरूर देना चाहिए। और तेजी से बढ़ने के लिए बहुत प्रकार का विटामिन्स का सिरप आता है, तो अगर चाहते हैं कि हमारा बकरी का बच्चा
1: सुरक्षित रहे,
0: स्वस्थ रहे और जल्दी तैयार हो जाए तो उसको विटामिन का सिरप देना चाहिए।
1: आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, आशा है कि सभी ग्रामीण किसान भाई बहन इस जानकारी से बहुत ही लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा, अधर हमें जानकारी सुन लिए बरसात के मौसम में बकरी में होए वाला बीमारी और ओकर बचाव के बारे में जे जानकारी देत हल थी डॉक्टर अर्जुन प्रसाद हल थी, अनुखर से बतियात हल थी अलका कुमारी। तो जानकारी तो बहुत बढ़िया लगल होती किसान भाई बहन के,
3: अब बहुत ही लाभप्रद जानकारी है। लेकिन हमने के जे जो गोरु डांगर रखो ये सबसे ज्यादा जो बकरी रखो ये का हमने वैक्सीन पहले जरूर डलवा दिए ताकि वो स्वस्थ रहे और जितना भी बकरी पालिए जितना भी रहे उसका किसी तरीका के कोई बीमारी ना हुए।
2: बिल्कुल, तो चलो जानकारी के बाद अब चलो ये तनी सुन किसान भाई बहन के गीत नाद देने लेकर के,
3: तो सुनिए एगो लोकगीत।

0: तो किसान भाई बहन, यह गीत के साथ कार्यक्रम किसानवाणी से अब हम इनके विदा लेवे के बेरा भेग ले है। तो हमरा प्रशांत के
1: और हमरा अलका के
0: अनुमति दा
1: जोहार।

0: ki taan maari
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: के बारे में,
1: बिल्कुल,
0: कि सबसे खेती बारी हमने के घर के जरूरी हो, साथ में पशुधन भी हमने के सबसे ज्यादा जरूरत हो है।
1: बिल्कुल,
0: तो देखला कि बरसात में हमने पशु के कुछ कुछ बात के ज्यादा ख्याल रखे के पड़े है कि कैसे वो स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी रही है कि समय पर हमने टीकाकरण कराइए, और दूसरी बात हो कि पशु के सुरक्षित रखे वास्ते जरूरी रही है का संतुलित सही भोजन देना, ताकि किसी तरीका की बीमारी ना हो।
1: एकदम सही बात कह रहा है अलका बहन। अब धर के समय देखा कि बरसात के मौसम में परेशानी हो जाए कि चारों बगल से नवा नवा घास पाल पतोर सब है से उग जाए, तो ऐसा में से हमन के जो जानवर सब है जो खुला चरे वाला हाथी, खास करके उनका परेशानी ज्यादा आ जाए।
0: एकदम सही बात है, उसे समझ ही नहीं पाते कि कौन सा घास सही है, कौन सा में नहीं खाना है। उस जो सामने आवे है उका खा लेती है, और बहुत पत्ता में कुछ ऐसा कीड़ा रहो है जो उस सबके वास्ते स्वास्थ्य वास्ते काफी हानिकारक रहो है।
1: बहुत सा नवा नवा देखबा की घास पात रहो है जो ऐसे हानिकारक रहो है, संगे संगे है की नवा नवा घास में ना बहुत तरह के ऐसे कीड़ा सब सटल रहो है जैसे उसके निवाला बन जाए,
0: वो
1: सब ऐसे पूरा खा लेती। अब जब ऐसे खा लेती तो बहुत ज्यादा ऐसे हरा चारा खाए से पेट में अफरट हो जाए, पेट अफुर लगो है, तो ऐसा में जानवर के बहुत तकलीफ हो है, पेट फूले की समस्या हो तो, संगे संगे हो तो कि उस सबके डायरिया की समस्या हो तो
0: ज्यादा हो जाए।
1: हाँ, तो डायरिया के तू ले लेबा तो खाली बड़ बड़ जानवर तो गाये भैंस और रेती के बैल के बात ना करा, छगरे पठरू के भी सब ऐसे समस्या शुरू हो जाए। तो ई खतिल कहबन कि भाई ऐसे एकदम खुला में उस सबके तो कुछ बुझा ना है कि जितना ताकत रहे उतना दिन सगर रात सगर चरते रहो, लेकिन उस सब पेट भरल कि ना भरल ई समस्या उनके न रहे, समस्या हो जाए आगे के जो पशुपालक भाई हथी उ सबके। कहे कि जानवर जब परेशान हुए तो पशुपालक भाई के परेशानी बढ़ जाए, कहे कि एक आमदनी के जरिया है हम इनके पशुधन, संगे संगे यकीन श्रम के जो विभाजन हो जाए हम इनके पशु के साथ, हम इन जो मेहनत करो ये ओकरा से आधा से ज्यादा मेहनत पशु हम इनके कर देती खेती बाड़ी के दिन में। कहे कि देखवा का हर बैल से ज्यादा है से खेती बाड़ी के जोत कोड़ हो, तो और ई चीज है से अगर बीमार पड़ गलो बैल तो रहा है कि खेत जोते के समस्या वहां खड़ा हो तो। अब धर के समय में ऐसा ना एक छोट छोट किसान के पास भी ऐसे बहुत ट्रैक्टर हो गए या फिर पावर टीलर हो गए, ये सब चीज ना है। अब धरो है झारखंड में ऐसे छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे किसान है, छोटे छोटे खेत जोते की जगह है, सीढ़ी नुमा रहे से आदमी के गोरुए डांगर से खेत के जोतन कड़न हो है। तो जे हम इनके देखवा की मैदानी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जोत कोड़ हो ट्रैक्टर से या फिर पावर टीलर से, लेकिन हम इनके झारखंड प्रदेश लागे है सीढ़ी नुमा खेत, छोटे छोटे डबरा लगे, छोटे छोटे टुंगरी लगे, तो ऐसा में ऐसे हर बैल से हम इनके जोत कोड़ हो है। तो ऐसा में सबसे ज्यादा सहयोगी, सबसे बड़ा सहयोगी हम इनके गुरु डांगर ही हुए है।
0: बिल्कुल,
1: तो ई कह करके उनका स्वास्थ्य के ध्यान रखना बहुत जरूरी हो। संतुलित खाना के जो बात कर ला, संतुलित भोजन में आज है कि अभी के 60% जो है से हरा चारा उस सब के दे देवल जाए, यानी कि अगर 40 किलो है उस सब खाना खाती तो कम से कम ऐसे एकरा है से विभाजन कर देवल जाए 100% वो है एक तरह के पूरा फुल हो जाए खाना, तो घर में 60% 60वां भाग जो है 60% ऐसे हरा चारा लेला, 40% ऐसे सूखा चारा लेला, तो हरा और सूखा मिला करके जब उस सबके चारा मिलते है तब समझ ला कि उस सबके भोजन संतुलित बन पाते, पेट में अफरा तफरी नहीं होते,
0: किसी तरीके की बीमारी के डर
1: नहीं रहते। और एकर अलावे भी उन सब के ऐसे मिनरल मिक्सर भी देवल जाए, ताकि उस सब के ऐसे कैल्शियम मिले, मिनरल मिक्सर से खनिज है उस सब के मिलते रहे, ताकि उस सब के हड्डी मजबूत रहे, दूध बढ़ावे के देवे के क्षमता बनल रहे, ताकत शरीर में बनल रहे। ई खतील है से सब संतुलित करके भोजन अगर उस सब के देवल जाए तो हम इनके जानवर बिल्कुल स्वस्थ रहते है। और एकर अलावे है कि उखिन के रख रखाव करे की जगह भी हो से कम भिंजल भांजल ना हुए चाहिए, किचिर किचिर वाला जगह
0: पानी जमाव की जगह
1: ना होना चाहिए। अगर उस सब तरह के अगर किचकिचिया में रहतु तो समझ ला कि एक तरह से ऐसे गोड़ वाला जो बीमारी शुरू हो जाओ, जानवर के बैठे उठे में परेशानी हो तो वहां पर जानवर ऐसे थकान महसूस करते, रात भर बढ़िया से बैठ ना पारतो, तो ओकर में धीरे धीरे ऐसे थकान रहतो तो दूध के पैदावार घट जितो, ओकर में ताकत कम हो जितो। ई खातिर है कि उ सब के सूखा स्थान ज्यादा बना के रखे के चाहिए ताकि उ सब बढ़िया से बैठ सके।

0: से रह सके। मच्छर वहां पर पनपना चाहिए ताकि
1: धुआं करते रहना चाहिए।
0: हाँ, ये सब चीज के जरूर ऐसे किसान भाई बहन अबधर के समय बरसात के समय में खास करके जरूर ख्याल रखें।
1: जरूर। और देखा हमने कार्यक्रम में आगे भी बनल रहे, लेकिन सुनिए एगो गीत।
0: हाँ।
1: और कुछ जरूरी संदेश।

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

0: तो देखा अभी हमने सुने लिए गीत और कुछ जरूरी संदेश, और अब हमने जो जानकारी लेकर ले है सभी ग्रामीण भाई बहन के सुनावे वास्ते कि अभी जो मौसम बरसात के मौसम में बहुत जगह टमाटर और गोभी की खेती हुए थो लगवे वाला हथो तो एक बारे में बतवे थे राम कुमार और उनका से बातचीत कर ले थे प्रशांत कुमार, तो सुना जाए जानकारी भरल बातचीत।
1: श्रोताओं, हम आए हुए हैं ग्राम म्यातू में और हमारे सम्मुख एक बहुत नामचीन किसान हैं राम कुमार साव। राम कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपके बगान में हमने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से गोभी और टमाटर की नर्सरी आपने कर रखी है। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं अच्छी नर्सरी का राज कि किस प्रकार से आपने ये नर्सरी तैयार की।
2: सर, जहाँ तक है नर्सरी का सवाल, तो हम लोग को सबसे पहले मिट्टी का चयन करना चाहिए।
1: जी,
2: मिट्टी हमको देखना है कि वैसा मिट्टी जहाँ पर हम जिस बीज को बो रहे हैं वो बढ़िया से ऊपर निकल जाए, और इसमें सबसे अच्छा हम लोग का काली मिट्टी
1: जी,
2: और जिसमें से थोड़ा सा बलुआही प्लस दोमट मिला हुआ मिट्टी हो, ये बहुत ही उपयुक्त होता है।
1: जी, ये बरसात का मौसम है और इस मौसम में कुछ खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है, तो आपने ये नर्सरी बनाने का जगह किस प्रकार से चयन किया?
2: ये सबसे पहले कि जहाँ पर पानी का थोड़ा बहाव कम है और थोड़ा सा जमीन ऊंची जमीन है
1: जी,
2: जिसके कारण वर्षा का पानी बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है
1: जी।
2: और दूसरी बात है कि जब पानी उसमें ज्यादा नहीं रहता
1: ठहरेगा,
2: हाँ। ठहरेगा तो वो क्या होता है कि उसमें गलन सड़न
1: जी,
2: ये और भी बहुत तरह का जो है उसमें ये नहीं होता है और पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं
1: जी। आपकी नर्सरी में हमने देखा कि एक भी घास उसमें नहीं था, ना ही कोई खरपतवार था, क्या राज है इसका?
2: हाँ, इसमें है कि सबसे पहले हम कुछ वैसे मिट्टी थे जो मतलब कि खेत क्यारी से जो आता है जहाँ घास की मात्रा नहीं होती है, वैसा मिट्टी हम दो चार ट्रैक्टर ला करके रखे हुए थे, उस मिट्टी को हम ऊपर से डाल दिए
1: जी।
2: अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि उसमें से नया मिट्टी होने के कारण वो उसमें घास नहीं पनप पाए,
1: नई मिट्टी होने के कारण उसमें घास
2: नहीं पनप पाया,
1: कबरवार नहीं हो पाया।
2: हाँ, बीज में हो सकता है जो नीचे का बीज होगा दब गया होगा, जो भी हो सकता है
1: जी,
2: लेकिन हम देखें कि उससे मतलब घास नहीं हुआ और बढ़िया उसमें बीज ये पौधे का
1: जी। कितने दिन पहले आपने नर्सरी की थी?
2: ये 24 मतलब जून को किए थे, अभी जुलाई 14 जुलाई है
1: जी।
2: हाँ, करीब तकरीबन 20 दिन हो गया।
1: 20 दिन में आपकी जो नर्सरी है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई।
2: हाँ, एकदम रोपाई के लिए एकदम ये कह रहा है, बस थोड़ा सा वर्षा का इंतजार करें, जैसे ही थोड़ा पानी पड़ जाएगा बस इसको हम बारी में लगा देंगे।
1: तो ये जो नर्सरी है ये किस्म का बताएं कि कौन कौन से किस्म का है?
2: ये सब पूरा हाइब्रिड है
1: जी।
2: लोग तो बोलते हैं कि बरसात के दिनों में हाइब्रिड जो है सो नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो बरसात हो या जाड़ा हो या गर्मी हो, उन्नत बीज, उन्नत खाद
1: जी,
2: और समुचित व्यवस्था, अच्छा कीटनाशक का प्रयोग करके हम अच्छे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं
1: जी,
2: और मुनाफा भी कमा सकते हैं।
1: राम कुमार जी, आप बरसात के मौसम में खेती कर रहे हैं, ये आपका जो अनुभव है कितने सालों का है?
2: तकरीबन हम लोग का बहुत दिन से खेती कर रहे हैं, तकरीबन 20 वर्ष भी,
1: चूंकि ये बरसात का जो है सब्जी के लिए प्रतिकूल होता है।
2: 20 वर्ष का लगभग होने जा रहा है।
1: 20 वर्षों का अनुभव है आपका?
2: 20 वर्षों से मैं कर रहा हूँ
1: बरसात के मौसम में।
2: बरसात के मौसम
1: और खास करके ये गोभी की खेती करते हैं?
2: हाँ, बरसात में तो एकदम गोभी करते हैं, मकई नहीं लगाते हैं हम। गोभी मकई लगाते हैं, थोड़ा बहुत लगाते हैं, उसमें भी अच्छा है, लेकिन गोभी थोड़ा ज्यादा मुनाफा देता है।
1: गोभी और टमाटर भी लगाते हैं?
2: है, टमाटर है, मिर्चा है, ये सब चीज अत्यधिक मुनाफा का
1: देने वाला है,
2: देने वाला फसल।
1: तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोभी आपका नर्सरी तैयार है और टमाटर की भी नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, आगे आपकी योजना के बारे में जानेंगे कि आप इसके बाद क्या करेंगे?
2: जैसे ही पहले हम खेत का अपना जुताई कर लिए हैं और उसमें से पांत जो बनाना होता है हल बैल से वो भी हम बना चुके हैं
1: जी।
2: जैसे ही पानी पड़ेगा, थोड़ा सा मौसम मॉइस्चराइज हो जाएगा, मतलब नमी आ जाएगा, उसके बाद हम उसमें पूरा पौधों का रोपण कर देंगे
1: जी।
2: और फिर 8-10 दिन के अंदर में फिर उसमें हम मतलब कुदाल से उसको हम कुड़ाई कर देंगे,
1: पौधा रोपण करेंगे यहाँ से ले जा करके।
2: हाँ,
1: जो सावधानी बरतनी होती है उसमें क्या सावधानी आप बरतेंगे?
2: सबसे पहले कि थोड़ा सा मौसम ठंडा होना चाहिए,

0: गर्मी धूप से भी उसको बचाना है
1: जी।
0: और उपाय शाम के टाइम ही हम लोग करते हैं, सुबह के टाइम नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर बरसात का समय है, बादल है, तो उसमें कोई फिर ऐसा नहीं, सुबह में भी हम लोग करते हैं।
1: जी जी जी। तो अप्रोपाई के समय उसमें क्या क्या है सो खाद का है सो प्रबंध करते हैं?
0: थोड़ा थोड़ा हम लोग उसमें जो है शुरू के समय में डीएपी, जिसमें सब कुछ एनपीके टाइप का मिला हुआ रहता है, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस सब, तो उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा देते हैं एकदम दो चार दाना करके
1: जी जी।
0: और लगने के बाद फिर उसमें कुड़ाई होता है 8-10 दिन के अंदर में ही, और उसमें फिर हम लोग थोड़ा अत्यधिक मात्रा में थोड़ा सा बढ़ा करके उसमें खाद देते हैं चारों तरफ, प्रत्येक पौधों के जड़ के थोड़ा सा दूरी के पास,
1: मतलब कि 2-4 इंच के बगल में,
0: ताकि उसमें गलन सड़न ना लगे।
1: जी जी। अगर जड़ में सटा करके देने से तो उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है,
0: गलने का सड़ने का डर है
1: जी,
0: पौधा भी खराब हो सकता, मतलब पौधे से जड़ से 2-3 इंच की दूरी पर ही हम उसको खाद डालेंगे।
1: जी जी। ये बेहतर तरीका है पौधों को बचाने का, और सही तरीका है खाद डालने का। अब आगे बताएं कि जब आप हैं सो रोपाई कर देंगे और दूसरे बार कोड़न कितने दिनों के बाद आप देंगे?
0: करीब करीब 7-8 या 10 दिन के अंदर में पूरा कोड़ देना है उसको
1: जी।
0: घास पतवार जितना उसको मतलब कोड़ने के दरमियान में सब खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच भी जाएगा, फिर उसमें हम लोग निकाल करते हैं, या नेक्स्ट जब फिर 20-25 दिन के बाद कोड़ाई करेंगे तो वो भी उसमें निकल जाता है। उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत घास रह जाता है
1: जी,
0: तो फिर हम उसको निकाउन बोलते हैं, हाथ से उखाड़ देते हैं।
1: यानी कि 2 बार हमें रोपाई करते हैं, एक बार बोले कि 10 दिन के अंदर खुरपाई कर देना है,
0: फिर 20-25 दिन के अंदर,
1: 20-25 दिन के अंदर खुरपाई करनी है। तो ये खुरपाई करते हैं, क्या उस चक्र में दवा का भी प्रयोग करते हैं?
0: हाँ, जब हम देखते हैं कि अगर उस तरह का किसी तरह का मतलब इसमें कीड़ों का प्रकोप जो कि बरसात में अत्यधिक होता है, तो शुरू में तो थोड़ा कम पावर का कीटनाशक का यूज करते हैं
1: जी,
0: और उसके बाद फिर जैसे पत्ते बड़े हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा पौधे में थोड़ा सा जान आ जाता है, तो थोड़ा सा हार्ट पावर का भी दवा हम लोग उसमें यूज करते हैं।
1: तो इसमें जो गोभी है उसमें कौन कौन से प्रकार के मतलब कि रोग या कीड़े देखने को मिलते हैं, या टमाटर में?
0: पहले तो जिस समय हम लोग गोभी करते थे उस समय तो कीड़े से बहुत नुकसान होता था, लेकिन जब से आज के मतलब इस समय में ये वैज्ञानिक प्रचलन हुआ, अच्छे अच्छे

0: जैसे कि हो गया आपको राजन है, रिमोन है
1: जी,
0: थोड़ा सा ये सब महंगा दवा है, लेकिन ये सभी
1: कामयाब है,
0: कामयाब दवा है
1: जी।
0: और उसके बाद भी अगर अत्यधिक प्रकोप लगता है तो दवा से दवा, दूसरे दवा से तीसरे दवा चेंज करते हैं। एक ही दवा देने के बाद क्या आता है कि कीड़े उसके अनुकूल हो जाते हैं और फिर वो प्रभावहीन हो जाता है दवा
1: जी।
0: तो एक दवा चलाएं रिमोन, तो उसके बाद फिर कोई दूसरा दवा दिए या उसे कम ही पावर का दिए, लेकिन अल्टरनेट उसको फिर ये कर देते हैं। तो कीड़े उस तरह से क्या होते हैं कि कभी रिमोन खा करके अगर अनुकूलित हो गए तो उसमें फिर वो प्रतिकूल में वो मर जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो मतलब कि आदि नहीं बनाना है किसी एक दवा का, नहीं तो वो अपना जो है सो उसमें सुरक्षा कवच तैयार कर लेते हैं। जी राम कुमार जी, हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि ये बरसात का मौसम है, बहुत सारे किसान लोग हैं जो बरसात के मौसम में खेती नहीं कर पाते हैं और खास करके सब्जियों की खेती, आप बरसात का ही मौसम क्यों चुनते हैं?
0: क्योंकि हम झारखंड प्रदेश से हैं और झारखंड एक पठारी भूमि है, यहाँ पर वर्षा का पानी ऊंची जमीन में ठहर नहीं पाता है
1: जी।
0: जबकि और भी जगह देखते हैं कि पानी का जल जमाव अत्यधिक हो जाता है, सब्जी का जो है सो उधर थोड़ा सा

0: झारखंड प्रदेश में,
1: झारखंड प्रदेश के।
0: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप हैं सो नर्सरी तैयार ही है, नर्सरी कितने कट्ठे में आप लगाएंगे?
1: ये हमारा एक एकड़ में लगेगा गोभी
0: जी,
1: सुबह टमाटर भी लगाएंगे।
0: तो कुल मिला के जो नर्सरी आपकी तैयार है वो कितनी भूमि के लिए है?
1: वो करीब 2 एकड़ के लिए है।
0: 2 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार है। तो आपका जो है केवल बूंदाबांदी होने की इंतजार में है, आप हैं
1: इंतजार में है,
0: और जैसे बूंदाबांदी शुरू होगी तो आप है सो नर्सरी है सो खेत में आप ले जाएंगे, उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो राम कुमार जी, आपने अपने पत्ता गोभी और टमाटर के खेती के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो देखा उधर जानकारी सुन लिए कि बरसात के जे मौसम में टमाटर और गोभी की खेती के बारे में कि खेती कैसे करल जाए, कैसे एक और नर्सरी बढ़िया से करल जाए ताकि ऐसे बढ़िया नर्सरी तैयार हुए और खेती बढ़िया से हो पावे।
2: बिल्कुल, अरे बतवे थलथिन राम कुमार और इनका से बातचीत कर ले हलथिन प्रशांत कुमार।
0: तो चला अब ऐसे जाए के समय तो हो रहा है लेकिन कुछ समय बचल है, तो किसान भाई बहन की थोड़ा सा मनोरंजन आर कर रखो, तो सुनवो ये गीत
2: जरूर।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा समिट का आज समापन हो गया। समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज पेपर लीक मामले को लेकर लोक भवन के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्यों में लगे बेहतर कार्य करने वाले 7 बीएलओ और 4 सुपरवाइजरों को एसडीएम अनंत कुमार ने सम्मानित किया। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से एसआईआर में लगे बीएलओ और कर्मी मोटिवेट होंगे और बेहतर कार्य कर सकेंगे। पलामू पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और हत्या मामले की विस्तृत जानकारी दी है। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय साहेबगंज जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं के बीच नशा मुक्ति विषय पर निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों बाद।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। पेश है कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को मासूम का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, हम सब इस आपके लिए जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत होता है उसमें कई विशेष जानकारियां आपसे करते हैं साझा। इसके अलावा कुछ सुरीले और मधुर गीतों से आपका करते हैं भरपूर मनोरंजन। लेकिन आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, वर्तमान समय की मांग है प्रोफेशनल कोर्सेज।
2: युवा साथियों, रेडियो संचार का सबसे पुराना और लोकप्रिय माध्यम है। इसे गरीबों का माध्यम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सस्ता, सरल और सुलभ माध्यम भी है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में मुंबई से शुरू हुआ, मगर विधिवत रूप से 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। और यही कारण है कि आज के दिन को, यानी 23 जुलाई को, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में हुई और सरकार ने बाद में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया, और इस घटना को भी 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। युवा साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में रेडियो ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नेताओं के भाषण, युद्ध के समाचार, विभिन्न खेल, विशेषकर क्रिकेट कमेंट्री और गीतों भरे मनोरंजक कार्यक्रमों से रेडियो हर घर का हिस्सा बन गया। गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी भी रेडियो के माध्यम से ही मिलती है। समय के साथ साथ रेडियो ने भी खुद को बदला। एफएम चैनलों के आने से रेडियो

युवा और मनोरंजक बन गया। आरजे गाने, कॉमेडी और फोन इन के कार्यक्रमों ने इसे नई पहचान दी। आज इंटरनेट और ऐप के माध्यम से और पॉडकास्ट के कारण रेडियो दुनिया भर में सुना जा सकता है। वहीं कम्युनिटी रेडियो ने स्थानीय भाषा में कृषि, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देकर गांवों को सीधे जोड़ दिया है। आपदा के समय जब बिजली और इंटरनेट बंद रहते हैं तो भी बैटरी संचालित रेडियो सूचना का एकमात्र स्रोत बनता है। टीवी और मोबाइल के युग में भी रेडियो प्रासंगिक है। वास्तव में रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, जन जन की धड़कन है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: युवा दोस्तों, करियर निर्माण के क्रम में अलग अलग पाठ्यक्रम या कोर्स होते हैं जो करियर निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी क्रम में अगर मैनेजमेंट कोर्स की बात की जाए तो ये भी करियर निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, करियर निर्माण में BBA कोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका। भेंट वार्ताकार हैं गौसिया परवीन और भेंट करता है श्वेता रानी। तो आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता का पुनर्प्रसारण।
5: दोस्तों, वर्तमान समय की मांग है प्रोफेशनल कोर्सेज की, ताकि रोजगार के नए नए क्षेत्रों में आप आसानी से नौकरी पा सकें। आज के कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही एक प्रोफेशनल कोर्स के बारे में तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है रोजगार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में। आज हम बातें करेंगे BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स की, और इसकी विस्तृत जानकारियों के लिए आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में है मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रोफेसर और BBA फैकल्टी की असिस्टेंट को कोऑर्डिनेटर गौसिया परवीन। तो मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार
5: मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि BBA का फुल फॉर्म क्या होता है?
6: बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
5: बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यानी इस कोर्स में बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये कितने दिनों का कोर्स होता है?
6: ये आपका 3 इयर्स का कोर्स है। 3 साल में ये 6 सेमेस्टर के,
5: 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। ये 3 साल का कोर्स है। तो BBA ये ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है, तो ऑब्वियसली बच्चे तो 12th पास करने के बाद ही इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से स्ट्रीम के बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं?
6: देखिए, BBA करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, 45% से 12th पास होना चाहिए।
5: अच्छा, मिनिमम तय किया गया है मार्क्स, वो 45% होना नेसेसरी है 12th में, तभी जाकर के इस कोर्स में वो एडमिशन ले सकते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स को क्यों करना चाहिए और बच्चों को इससे क्या बेनिफिट है?
6: देखिए, ये वोकेशनल कोर्स में से सबसे लोकप्रिय कोर्सों में से एक है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप व्यवसाय के बारे में थ्योरेटिकल और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे, जिससे कि आप चाहे कंपनी में हो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि इस कोर्स में आपको बिजनेस के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल नॉलेज दिया जाता है, तो व्यवसाय के सभी पहलुओं को आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से आप कंपनी के एक प्रतिष्ठित पोस्ट में

0: काम कर पाएंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मैम, अभी जिस तरह का दौर है नौकरी को लेकर के या रोजगार को लेकर के, तो ज्यादातर लोग अभी सरकारी नौकरी के अलावे कहें तो बिजनेस वगैरह या कुछ भी अपनी कंपनी है, तो इस तरफ ज्यादा झुकाव युवाओं को हो रहा है अभी के दौर के जो युवा है। तो वाकई ये कोर्स तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है लोगों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें बीबीए के सिलेबस की मैम, तो बीबीए कोर्स के सिलेबस क्या क्या होते हैं?
0: बीबीए के सिलेबस में आपको एक प्रिपेयर किया जाता है एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन के तौर पे तैयार किया जाता है। तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, HRM, दूसरे और सारे भी पेपर्स को इसमें इंक्लूड किया जाती है। और साथ ही साथ बिजनेस में किस तरीके की संस्था काम करती है, नेचर कैसे रखना है, तो मोटे तौर पे आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों का खुद का बिजनेस को लेकर नजरिया किस तरीके से रहे, तो वो सारे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। जैसे कि एग्जांपल पे आपको हम यहाँ बता सकते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपको बिजनेस के लिए तैयार करेंगे।
1: आपने कम्युनिकेशन की बात कही है मैम, तो एक बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए खुद का भी स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप इस कोर्स के दरमियान बच्चों को किस तरह का स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें सिखाती हैं?
0: स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज दिया जाता है, जिसमें कि आप लोगों को कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के साथ साथ ही टेली और तरीके की कोर्सेज दी जाती है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश करवाया जाता है, साथ ही साथ तरह तरह के सेमिनार वर्कशॉप करवाया जाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर जितने भी स्किल्स छुपे हुए हैं और जो भी बच्चों का हेजिटेशन तनाव है वो दूर हो सके।
1: ये तो काफी जरूरी भी होता है, अगर आप स्मार्ट रहते हैं हर एक मामले में तो आपका बिजनेस या किसी प्राइवेट कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ज्यादा आपको बेनिफिट होता है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोर्स को कम्प्लीट करने के लिए फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है मैम?
0: देखिए पर ईयर ये 15,000 इसका फीस है, मतलब आप पर सेमेस्टर देखें क्योंकि 3 साल का कोर्स है तो 45,000, और अगर हम सेमेस्टर वाइज देखें तो पर सेमेस्टर 7,500 इसका फी है।
1: तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे जो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, उनका फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनके लिए क्या सुविधा दी जाती है?
0: जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है बीसी एसटीएससी जो भी कैटेगरी के हैं, तो उनको ई कल्याण के थ्रू जो एडमिशन फीस वगैरह है जो भी उनका फीस लगता है वो स्कॉलरशिप के थ्रू उनको वापस मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप पूरा मिलता है, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से उनका जो फीस है वो सरकार के द्वारा वापस कर दिया जाता है।
1: सबसे बड़ी बात ये होती है मैम कि प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद बच्चों में ये होता है कि हम नौकरी कहाँ पाएं, कहाँ ढूंढे, इसके लिए क्या कॉलेज से व्यवस्था होती है प्लेसमेंट की?
0: देखिए ये जो बीबीए कोर्स है इसमें आपका लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप भी है, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट बच्चों को दे पाए। खुद बच्चे चूंकि ये आप लोगों का वोकेशनल के साथ आपको ग्रेजुएशन की भी मतलब एक तरीके से डिग्री कोर्स है ये, तो आप नॉर्मल जनरल जो बैंक, SSC, रेलवे, इसके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक किसी भी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट में कर सकते हैं। दो थर्ड आपके लिए स्पेशल वैकेंसी आता है, बीबीए के लिए स्पेशल वैकेंसीज आते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आप जा सकते हैं। तो एक तरीके से आपका जनरल कॉम्पिटिशन और साथ ही साथ एक अलग कैटेगरी लेकर आप लोगों के लिए एक अलग कॉम्पिटिशन भी तैयार रहता है, तो जॉब में अपार संभावना है। इसको करने के बाद कोई भी घर पर बैठे नहीं रह सकते।
1: तो आपने इंटर्नशिप की भी बात कही थी मैम, तो आप इंटर्नशिप के लिए कहाँ बच्चों को भेजती हैं?
0: देखिए इंटर्नशिप के लिए हम लोगों का जो कॉलेज है वो प्रतिष्ठित संस्थाओं में, चाहे वो हजारीबाग हो, रांची हो, वहाँ पे उनको भेजा जाता है।
1: इंटर्नशिप में बच्चे क्या कुछ सीख पाते हैं, वहाँ से क्या उन्हें सीखने के लिए भेजा जाता है?
0: इंटर्नशिप के थ्रू वो ये देखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो डील किया जाता है, रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, कब कौन से बुक्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। एक्चुअल ये प्रैक्टिकल नॉलेज ही उनको आगे श्रेष्ठ बनाता है, सबसे अलग बनाता है।
1: अगर बुक्स की बात करें मैम, तो क्या जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है बुक आपके यहाँ से?
0: 100% हम लोगों के यहाँ पे एक डेवलप्ड लाइब्रेरी है जिसमें आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। एक निश्चित समय के लिए आपको बुक्स मिलता है, आप उसको पढ़ें, वहाँ जमा करें। हमारे जो टीचर्स हैं वो इस तरीके से आप लोगों को नोट्स दिलवाते हैं कि आपको और किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती।
1: बीबीए के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट पर बच्चे ऑनर्स कर सकते हैं?
0: बीबीए पे आप बीबीए फाइनेंस, बीबीए एविएशन, बीबीए HR, बीबीए बैंकिंग, बीबीए टूरिज्म, इन सभी कोर्सेज पे आप बीबीए कर सकते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पर ऑनर्स किया जा सकता है, और इसके बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, वो इस सब पर बहुत सारे वैकेंसी निकालती रहती हैं समय समय पर।
0: और एक बात श्रोताओं को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एमबीए कोर्स है सबको वाकिफ है, सबको पता है एमबीए के बारे में, अभी बीबीए उसी का आप कह

0: सकते हैं एमबीए मास्टर डिग्री है तो बीबीए उसका बैचलर डिग्री है। अभी ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा बीबीए प्लस एमबीए को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और अभी दिया भी जा रहा है। आप लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा और आप लोगों का पर्सनालिटी, स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ इंटर्नशिप, ये सारे का बहुत अच्छे से विकास हो पाएगा,
1: जो कि इस कोर्स को करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन सारी चीजों पर उनकी पकड़ हो, वो बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स में या फिर अपनी खुद की भी कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसमें ये सब बहुत ज्यादा आगे उन्हें काम आ सकता है। तो मैम, आपने बीबीए कोर्स से संबंधित काफी कुछ जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता इस जानकारी को सुन रहे हैं वो जरूर लाभ उठाएंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो युवा साथियों, आपने देखा बहुत अच्छी जानकारी मिली कि कैसे बीबीए कोर्स की करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा कि बताया गया कि आने वाले समय में बीबीए प्लस से एमबीए करने वालों को अधिक वेटेज दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस भेंटवार्ता से आप सबने भरपूर लाभ उठाया होगा। और अब एक बार फिर आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

और इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपने दोस्त मासूम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म आंखें का गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मीत बंधु नेहा कक्कड़ और साथियों की आवाजों में फिल्म जुड़वा 2 का गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है भीष्म।

और फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान को। फिल्म का नाम है अकीरा।

और इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल के लिए अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल करें इंतजार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जेपीएससी मामले पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेरा। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का प्रारूप। सीईओ की मतदाताओं से जल्द एनुमरेशन प्रपत्र भरने की अपील। रांची में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन। राज्यपाल ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। और मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने की मुलाकात। डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी के रांची स्थित कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्री साहू ने आज रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्यालय का घेराव किए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव किया वह घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
1: भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने के लिए आए थे। लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजी करने का काम किया गया, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए और पुलिस जो वहां पर तैनात थी एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रहे थे।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज हजारीबाग में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने जेपीएससी पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार में जितनी बार जेपीएससी की बहाली हुई वह विवादों में रहा है। उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों के कारण राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
2: जेपीएससी में जितनी भी हेमंत सोरेन के राज्य में 6 वर्षों में हुआ चुनाव हर परीक्षा विवादों में घिरा रहा, और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश वो करप्ट लोगों को नियुक्त। झारखंड की बच्चों की भविष्य को बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे।
0: इधर रांची महानगर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने आज पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलोकतांत्रिक व्यवहार किया। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
3: जो लोग एक लोकतांत्रिक संघर्ष को खूनी संघर्ष बदलना चाहते हैं और इस तरह से एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुद्दा कहीं ना कहीं गौण हो जाए, उन्होंने ये पत्थर चलाकर खून हमारा बहाकर हमारे संकल्प को और मजबूत किया। छात्रों की लड़ाई में हमें भी साथ है। कौन लोग पत्थर चला रहे थे, वीडियो फुटेज हमारे पास है और हम उन पर एफआईआर यहाँ कर रहे हैं।
0: राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अनुरोध किया है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएं। श्री कुमार ने बताया कि किसी मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है तो वे अपने बीएलओ से संपर्क कर दूसरा एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या ईसीआई नेट पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: इन पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के ऑडरे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आज समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्यपाल ने नागरिकों विशेषकर युवाओं से जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, वनों, खनिज संपदा तथा समृद्ध जनजातीय संस्कृति से संपन्न राज्य है। इसलिए विकास की हमारी यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो।
0: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार की योजनाओं से झारखंड के पर्यटन विकास को मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2018-19 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट, रामरेखा धाम और बाबा बैद्यनाथ धाम की विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच और नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक भंडारण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इसके तार कोडरमा से जुड़े मिलने के बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची है। जानकारी के मुताबिक अब तक हुई जांच में मैगजीन संचालक लोकाई निवासी शंकर यादव और नवाडीह निवासी महेश कुमार मेहता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक पिस्तौल, तीन कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खूंटी पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक जेवर दुकान और शराब दुकान में हुई चोरी मामले में जमशेदपुर और आदित्यपुर से अंतर्राज्यीय गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किया गया चारपहिया एक वाहन बरामद किया गया है।
2: जो लोग प्राइमरी इन्वॉल्व थे उन सभी की हम लोगों ने अरेस्टिंग की और उन्हीं की निशानदेही के आधार पर हम लोगों ने कवरी भी की है। जो भी ज्वेलरी चुराई थी उनके द्वारा वो हम लोग को बरामद हुई है और जो लिखा भी लोगों से चुराया था वो भी हम लोग को काफी अच्छे खासे सामने में बरामद हुआ और ये लोग जो पकड़ाए हैं इनका काफी बड़ा अपराधी इतिहास रहा है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 23 आईबीजी मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, डोरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेमचंद्र और सहायक नोडल अधिकारी मेजर आनंद प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने श्री सोरेन को रांची में 26 जुलाई से आयोजित होने वाले डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जेपीएससी मामले पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेराव। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का प्रारूप। सीईओ की मतदाताओं से जल्द इन्यूमरेशन

0: प्रपत्र भरने की अपील। रांची में दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन। राज्यपाल ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। और मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने की मुलाकात। डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य साहिबगंज जिले में भी चल रहा है। इसके तहत विभिन्न चरणों में कार्य किया जा रहा है। 29 जुलाई तक इनोमरेशन फेज होगा तथा इसके अगले दो माह तक दावा एवं आपत्ति का फेज होगा। 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों राजमहल, बोरियो और बरहेट में क्रमशः 36,900, 50,400 और 27,000 अनमैप्ड वोटर हैं। इन क्षेत्रों में 89.8%, 82.5% और 87.8% वोटर्स का मैपिंग किया जा चुका है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक दुबे ने बताया,
2: अगर अनमैप्ड इलेक्टर्स की बात करें तो वो संख्या एक राजमहल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36,900 की है, बोरियो विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,400 की है और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 27,000। तो तीनों एसीज को मिला लें तो लगभग 1,14,000 की है। मैपिंग का प्रतिशत जो है क्रमशः राजमहल, बोरियो एवं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में 89.8%, 82.5% एवं 87.8%।
1: केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और नर्सरी विकास योजना के तहत साहिबगंज जिले के किसान भी लाभ लेकर सफल हो रहे हैं। इसके तहत नर्सरी अधिष्ठापन के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। किसान इससे तैयार पौधों को लगाकर इसके फल से अचार, सॉस, पन्ना, शरबत का उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने बताया,
3: हमारे उद्यान विभाग की तरफ से बहुत से किसान जुड़े हैं और राज्य सरकार की योजना उद्यान विकास की योजना के अंतर्गत बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जिसमें कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गौतम राय जो कि हमारे राजमहल प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। पहले वो परंपरागत खेती के थ्रू ही अपना मतलब करते थे जिनमें उनका ज्यादा बचत नहीं हो पाता था। उसके बाद उनको पता चला, ये योजना लिया और आज वह पूरे जिले में ही नहीं पूरे राज्य में, राज्य के लिए, कृषकों के लिए आज वह गुणवत्ता युक्त फलदार पौधों का उत्पादन कर रहे हैं।
1: गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार साहिबगंज जिले में युद्ध और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किए गए तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। इसमें एनसीसी, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रकार के मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आम जनमानस को जागरूक करना है। साहिबगंज के अपर समाहर्ता विजय कुमार ने बताया,
4: आज मॉक ड्रिल किया गया। एक तो बम पाए जाने की सूचना को लेकर के किस तरह से प्रशासन किस तरह से एक्टिविटी करी, दूसरा और तीन तो नहीं दिखे आपने जो पटा हुआ उसको लेकर के किस तरह से प्रशासन करेगा। इमीडिएट कॉल गया कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम के द्वारा हॉस्पिटल को फोन किया, पुलिस को फोन किया और जोधी रस्ता में फोन किया और आकर के किस तरह से जो एक्टिविटी किया गया।
1: विगत कुछ दिनों में हुई बारिश से जहां एक ओर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धान की खेती में लगे किसानों में से ज्यादातर किसानों ने धान की रोपाई भी कर लिया है। केवीके और कृषि विभाग किसानों को आवश्यक परामर्श भी उपलब्ध करा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: हम
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म जीने की राह का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

और इस गीत के साथ ही आज का झनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म आखिर क्यों का गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

घोड़ा

अनवर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म अर्पण का गीत। ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम की अगली पेशकश आइए सुनते हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी।

और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में फिल्म बेताब का ये नगमा।

और ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में फिल्म आवारगी का गीत।

अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने

के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य
और परामर्श के माध्यम

से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ,
समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ

0: स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म एयरलिफ्ट का गीत।

इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने। केरेडारी से देवदत्त तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और मंजू बाला, हजारीबाग से संतोष कुमार, रेशमी कुमारी, रितेश कुमार, पूजा पांडे, दीपाली कुमारी, हर्षित कुमार, अभिनव कुमार, और रसूलीगंज हजारीबाग से मोहम्मद गुलाम अली, सद्दाम अली, बबलू, पप्पू और रॉबर्ट। आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत।

और अब आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। चेपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सभ्या ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास ठाकुर, प्रभात ठाकुर, जितेश ठाकुर, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीज फातिमा और शहनाज फातिमा। खीरगांव माली टोला हजारीबाग से कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में फिल्म प्रेम गीत का ये नगमा।

और अब आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। सरदार रोड से इम्तियाज अहमद शहबाज आलम, मोहम्मद फरजंद अली, मोहम्मद मुमताज, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुर्तजा, राजेंद्र ठाकुर और अजीत ठाकुर। बरका काना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा। मटवारी हजारीबाग से अमित चैटर्जी, करुणा चैटर्जी, वानी चैटर्जी और जोय चैटर्जी। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में फिल्म अजहर का गीत।

आपकी चाहत कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत इन श्रोताओं की पसंद का, मटवारी चौक हजारीबाग से हीरा ठाकुर, सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, शहनाज नूरी, महफूज आलम और शमशाद बेगम, मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा, और बड़का खाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। इन श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म आह का गीत।

और अब आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। रातू राज रांची से सच्चिदानंद दुबे, नटवर निर्मोही कुमार दिवाकर और सत्यम सांवरिया। पत्रातु हजारीबाग से बेसिल खलको, मधु रितु रचना, मीतु श्वेता पल्लवी, रोहित प्रवीण, नदीम और मनीषा सोरेन। स्टेशन रोड झुमरी तिलैया से किशोर कुमार मगधिया, सुनीता देवी और बंटी कुमारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मीका सिंह और नीति मोहन की आवाजों में फिल्म बादशाहों का गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का आपकी चाहत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे।

0: और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वे

0: उसके लगभग 1 करोड़ 10 लाख उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
1: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ख्यालों में
1: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: सुल्तान इब्न सुल्तान यानी कि भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद यानी कि बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
3: मां भाग रही थू मैं, काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं तो

0: ख्याला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई, प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो, अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दो बापू।
4: बोल दे बेटा।

भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

ஏன் விடுதுடா?

0: బతుకమ్మా బతుకమ్మా
1: బతుకమ్మా
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
4: आप पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
4: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
4: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल कर देखता है ना।
4: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहला बोला ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है। या बोला ये हम तेरा गोला बनाना गोला। या ताली नहीं रहा गाना गाना।
5: चल चल
3: देवी, तुम बदाना बदाना।
2: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके

0: जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कहता मौसम, जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सत्या, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रो बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा ने
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दीनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा।

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा।
0: अच्छा
1: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ।

0: तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में फिल्म ब्रह्मचारी का गीत।

रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म असली नकली का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: करती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराइए,
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: कल आज और कल, इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को। रजनीगंधा कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म आखिरी खत का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: और रजनीगंधा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म आंधी का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ।
2: एक काम करें, कम ये इमारत लो

0: personality.
1: और इस गीत के साथ ही आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में आज की फनकारा हैं हिंदी सिनेमा की वेनस कही जाने वाली बेहद मशहूर अदाकारा मधुबाला। श्रोताओ, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 23 जुलाई है और आज ही के दिन 1969 में मधुबाला का निधन हुआ था। श्रोताओ, मधुबाला ने सिर्फ 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत से बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 16 साल की उम्र में फिल्म महल, जो 1949 में रिलीज हुई थी, उसकी वो हीरोइन बनी और रातों रात स्टार बन गई। श्रोताओ, हम आपको बता दें, मधुबाला का पूरा नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। फिल्म महल से रातों रात वो स्टार बन गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म महल का गीत लता मंगेशकर की आवाज़

श्रोताओ, सन 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम में मधुबाला द्वारा निभाया गया अनारकली का किरदार आज भी लीजेंड माना जाता है और इस फिल्म का गीत प्यार किया तो डरना क्या लता मंगेशकर की आवाज में आज भी लोग गुनगुनाने को मजबूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, सन 1958 में किशोर कुमार के साथ कॉमेडी क्लासिक फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मधुबाला का किरदार लाजवाब रहा और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत भी ब्लॉकबस्टर बना। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, सन 1955 में गुरुदत्त के साथ मधुबाला अभिनीत कॉमेडी सोशल फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 बड़ी हिट फिल्म रही थी। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

और श्रोताओं अब आइए सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत। मधुबाला अभिनीत ये फिल्म भी काफी हिट रही थी। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

0: ਭਰੇ ਬੜਕੇ ਬੁੱਧਨ ਤੇਰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰ।
1: और इस गीत के साथ ही आज का आज के फनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों बाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
3: नितिन जी, विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
4: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम

0: सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। किटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।